0: तरीके का कलंक है। एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है।
1: As the probe in the case deepens, the former General Secretary of the Temple Trust, Champat Rai, has to stay in Ayodhya till the probe concludes. Amid the ongoing probe, Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust is set to appoint a Chief Executive Officer for the first time. The CEO will be entrusted with comprehensive responsibility for the temple's administration and financial management. Amid twists and turns in the probe, there is no end to political mudslinging at the same time.
2: पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था, यही तो करती थी समाजवादी पार्टी। आज हमें बता रहे हैं विकास के बारे में, आज वे लोग आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है।
3: अयोध्या में चौहावा में चोरी हुई नहीं, डकैती हुई है। ऑर्गेनाइज गैंग ने ऑर्गेनाइज ढंग से चोरी की है। सजा किसी को नहीं मिलेगी, छुटभैयों को मिलेगी, क्योंकि मामला जितना दिख रहा है उससे कई सैकड़ों गुना बड़ा है। तो माल जहां गया है ना, वही तो सरकार चला रहे हैं।
1: With the probe in the case intensifying, more skeletons are likely to tumble out of the closet. Bureau Report, India Today.
4: And well, the leadership battle inside Punjab Congress is far from over. Ahead of the 2027 assembly elections, the party remains caught in a deepening deadlock, with the Charanjit Singh Channe camp openly pushing for a leadership change and questioning Punjab Congress chief Amrinder Singh Rajawaring. While Bhupesh Baghel insists all is well, the show of strength by the Channe camp has only intensified speculation over a leadership reset. Take a look.
5: No end to deadlock in Punjab Congress. The leadership standoff and internal rifts widening ahead of the 2027 assembly election. More than 70 Congress leaders, including sitting and former MLAs, met Punjab Congress in charge Bhupesh Baghel at residence of MLA Rana Gurjeet Singh. Sources said almost every leader in the meeting urged the party leadership to replace Punjab Congress President Amarinder Singh Rajawaring. While Channe camp argued that the party needs a stronger leadership structure ahead of the 2027 assembly polls, Amrinder Waring rubbished the claim, saying no one was named in the meeting and that there are sleeper cells who meet BJP leaders and they don't have a place in the party.
6: Sukhjinder Singh Randhawa bilkul theek keh rahe ki sleeper cell te compromise leader Punjab nu bilkul nahi chahida. So, मैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਲਿਆਜ ਹੈ।
5: But sources suggest that inside the meeting, several leaders openly questioned his leadership and urged Baghel to convey their concerns to the Congress High Command.
7: ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖ ਜੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਲੀਡਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ।
8: ਵੀ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸਕੋ ਹਮਨੇ ਆਪਣੀ A to Z ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਏਕ ਏਕ ਬਾਤ ਏਕ ਏਕ ਰੀਜ਼ਨ ਲੌਜਿਕ ਕੇ ਸਾਥ ਆਗੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਤੇ ਹੈ ਵੀ ਵੋ ਜੋ ਬਾਤ ਹੈ ਵੋ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਰੱਖੇਗੀ।
5: Former Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channe had earlier added intrigue with a cryptic remark, signalling that he was waiting for the High Command's next move.
9: Andar baith ke galbaat hoegi sari, baaki pe tel dekhange, tel di taar dekhange.
5: The meeting came amid growing demands from the Charanjit Singh Channi faction to project him as the party's chief ministerial face. But after the meeting, Baghel attempted to cool the political temperature, asserting that all is well and that issues will be raised with the high command.
10: सभी साथियों से बात हुई, मुलाकात हुई, अपनी बात उन्होंने रखा है और जो पार्टी के हाई कमान का फैसला है उस पे किसी का इतराज नहीं है, सब हाई कमान के साथ.
5: The BJP attacked Congress over the internal tussle, claiming that Punjab Congress is divided and has no political future in the state.
11: बघेल साहब से मैं इतनी बेनती करूंगा कि हमारे सीनियर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, 50 साल उस पार्टी में रहा हूं साहब, मैं इतना ही कहूंगा कि बच के रहें. ये कांग्रेस के जो लीडरशिप है ना, पंजाब की कांग्रेस की लीडरशिप, ये सारी की सारी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है.
5: As Punjab Congress tries to project unity, the leadership questions remains the biggest test. Who will lead the party's battle for Punjab in 2027? With Aseem Bassi, Bureau Report, India Today.
4: Former Madhya Pradesh Home Minister Narottam Mishra being denied a BJP ticket for the Datia Assembly by-poll has triggered massive unrest in the district. Now, in the latest development, Narottam Mishra has met the state BJP President and Chief Minister at the latter's residence. Earlier, in an exclusive conversation with India Today, Narottam Mishra appealed to his supporters to remain calm. He urged them not to take the party's decision the wrong way, saying this is the time for patience and support and that there are civil ways to express dissent. Mishra said he would speak to his workers again, reiterated that his support for the BJP remains intact. Earlier, tempers ran high as thousands of Mishra's supporters blocked NH44, bringing traffic to a standstill for hours. Clashes also broke out after protesters pelted stones at the police, leaving several personnel injured. Heavy security has since been deployed. The political fallout has deepened, with the Datia BJP district president and all BJP councillors resigning in protest. Meanwhile, Mishra's supporters are now preparing to travel to Delhi to urge the BJP leadership to reconsider its decision and restore its candidature.
12: इस फैसले को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि मान के तो चला जा रहा था कि आप ही इकलौते उम्मीदवार हैं वहां से भाजपा के.
13: पार्टी का फैसला जो होता है वो ठीक ही होता है, उसको अच्छे रूप में ही लेना चाहिए, खराब रूप में नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है.
12: आपके तो सकारात्मक भाव हैं, लेकिन आपके जो समर्थक थे, जो महीनों से इंतजार कर रहे थे कि जो प्रकरण आया, राजन भारती का मामला कोर्ट में गया, फिर वहां से विधायकी गई, सदस्यता गई, सबको उम्मीद थी, लेकिन जब ये फैसला आया तो उनका गुस्सा साफ तौर पर सामने मिला. हाईवे जाम हो गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई, पथराव हो गया.
13: हाँ, छेड़ने का आवेश था, मैंने कल भी फिर उनसे निवेदन किया था, आज भी किया मैंने. जाम वाम की स्थिति नहीं होना चाहिए. कार्यकर्ता वो पेट्रोल डाल रहे थे, वो मुझे दिखाए विजुअल फुटेज, मिट्टी का तेल डालते हुए का. धैर्य और संयम का समय यही होता है, यही परीक्षा की घड़ी होती है. पार्टी फोरम पे अपनी बात रखने का अपना एक तरीका है, उस तरीकों को अपनाएं और अनुशासित रहे.
14: तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, उससे क्या होता है, कोई सबको समझे. 230 सीट है और 2000 लोगों ने तैयारी की, तो सबको टिकट मिलता नहीं. कोई बात नहीं, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, जो पार्टी ने निर्णय दिया उसका सब पालन करेंगे. नरोत्तम जी का अगर कहीं गुस्से, मेरी बात नहीं, मैंने कल फ़ोन लगाया था 2-3 बार, पर मेरे को मालूम है कि वो पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, पार्टी के निर्णय का सम्मान करें.
4: Prime Minister Modi concluded his New Zealand tour, during which key MOUs were signed between India and New Zealand. Prime Minister Modi received a grand welcome upon his arrival in Auckland. Prime Minister Modi and Prime Minister Christopher Luxon attended key events together and vowed to further strengthen ties between the two nations. Here's that report.

0: Missing JEE Advanced by just 2 marks would have shattered the dreams of many. But for Meerut's Sanket Kumar, it became the motivation to work even harder.
1: उस चैलेंज को दिमाग में रखते हुए मैंने फिर एक साल का ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया. ना ही मैंने किसी कॉलेज में अप्लाई किया, अप्लाई भी नहीं किया, एडमिशन तो दूर है, मैंने अप्लाई भी नहीं करा था किसी कॉलेज में. एंड फिर मैंने खुद से ही इसी कमरे में बैठ के अपनी पूरी सेल्फ स्टडी वगैरह करी एंड यहीं पर मैं रहा हूँ. अपने जो प्रीवियस नोट्स थे 11th 12th के, वो मैंने वापस से रिवाइज करे, मैंने फ्रॉम स्क्रैच वापस से अपनी प्रिपरेशन शुरू करी.
0: His perseverance paid off. In 2022, Sanket cracked both JEE Main and JEE Advanced and secured admission to the Indian Institute of Space Science and Technology, where he pursued aerospace engineering.
1: मेरे को IIST में एडमिशन मिला तो वहाँ पे जाके मुझे एयरक्राफ्ट से स्पेसक्राफ्ट तक का जो इनोवेशन है उस चीज के मैं इंट्रोड्यूस हुआ. एंड वहां पे जाके मैंने बहुत ज्यादा लाइक स्पेस कंजर्वेटिव भी पढ़ाई करी, तो उसने मेरे अंदर का इनोवेशन करा कि हाँ, नॉट एयरक्राफ्ट, नॉट समथिंग, बट समथिंग रिलेटेड टू स्पेस, समथिंग रिलेटेड टू रॉकेट्स. तो वहां से फिर मैं अपनी प्रिपरेशन मैंने वहां पे शुरू करी.
0: क्वालिफाइंग डायरेक्टली फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन हिज एकेडमिक परफॉर्मेंस, Sanket impressed the ISRO panel with his technical knowledge and has now been selected as a scientist engineer. He will be posted to ISRO's propulsion complex in Mahendragiri, where rocket systems undergo critical testing before launch. His family says his journey is proof that one setback does not define success. From missing JEE Advanced by just 2 marks to earning a place at ISRO, Sanket Kumar's story is a reminder that perseverance can sometimes achieve what talent alone cannot. Bureau Report, India Today.

0: And we're now getting some breaking news. A daughter in Jaipur, already accused of plotting her mother's murder, is now under fresh suspicion over her father's death. So there's a sensational twist that has emerged in this case. The Jaipur case that has taken another dramatic turn after relatives alleged that 23-year-old Ayushi may also have plotted the death of her father. Vijay Sharma, months before her mother, Neeraj Sharma, was allegedly murdered. Now, police have already alleged that Ayushi, along with relatives and hired killers, conspired to eliminate her mother in a 7 lakh rupees contract killing. The alleged motive, a government job on compassionate grounds and also control over the family assets. Now, the family claims the father, who had been recovering from a cerebral bleeding, was taken away for treatment by Ayushi and confined in an undisclosed location. He was later found critically ill and died under suspicious circumstances. And the family alleges that Ayushi quickly moved to seek a compassionate appointment after his death and wanted family property transferred to her name. Police have not confirmed any role in the father's death, but say that the fresh allegations made by the family will be investigated. In fact, a mother's murder charge already is under investigation, and now father's suspicious death angle has also emerged. So did killer greed play a role behind the series of mind-numbing crimes in one family? So Ayushi's role is now being alleged in the killing of her father as well. Remember, the investigation is already underway in the murder of her mother.
1: इस बात से कैसे अंदेशा किया जा सकता है कि ये 14 करोड़ 15 करोड़ रुपए की संपत्ति जो भी है इसके लालच में आकर कि इन्होंने अपनी माँ को ही मार दिया तो जो मेरे जीजाजी थे दिसंबर 24 तक वो अस्पताल में भर्ती रहे थे भर्ती होने के बाद में उनको प्राइवेट जगह पे बलराम और आयुषी मेरी भांजी ने रखा था और उसके बारे में किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं दी थी 3 महीने के ड्यूरेशन में जब निवेक हॉस्पिटल में वो अच्छी रिकवर हो गए थे तो 3 साढ़े 3 महीने जो इन्होंने अंडरग्राउंड रखा है कहाँ रखा है क्यों रखा है ये संदेह के घेरे में और अचानक आकर के उनको भर्ती करा देना ये कहीं ना कहीं अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो निश्चित रूप से ये बात सामने आएगी कि मेरे जीजाजी की मृत्यु में भी इन आयुषी और बलराम का 100% हाथ होगा
2: एक परिवादी पक्ष ने निश्चित ही एक परिवाद अभी उपस्थित होकर पेश किया है जिसमें उस परिवाद के बिंदु हैं उन पर गहन जांच हम सुनिश्चित करेंगे और इसमें भी जो अनुसंधान है वो जारी है जो मुख्य आरोपी है उसकी भी तलाश जारी है और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा
3: ये क्या परिवाद दिया है किस
2: जो मुख्य आरोपी है उसके संबंध में जो बलराम आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के संबंध में परिवाद आया है
3: नहीं ये कह रहे हैं कि उसके पिता की जो मौत हुई उसकी भी जांच कराई जाए
2: उसके संबंध में परिवाद में जो भी बिंदु है वो सक्षम अधिकारी से जांच करवा ली जाएगी
3: वो पूछा क्या चाहते हैं
2: वो यही चाहते हैं उनके मुख्य बिंदु यही है कि एक तो मुख्य आरोपी जो है उसमें उसकी गिरफ्तारी हो जाए

0: And we're getting some breaking news. This is regarding the Trisha Sharma death case. Now, AIIMS Delhi final report confirms skin tissue on the gym belt. AIIMS Delhi medical board that conducted a court-ordered second post-mortem on Trisha Sharma, who was found hanging at her marital residence in Bhopal on May 12th, has submitted its final forensic report to the CBI, confirming the presence of skin tissue on the alleged ligature material, a gymnastics belt, indicating that it matched the injury pattern on the victim's neck. Now, the five-member board handed over its 11-page report to the CBI in a sealed cover on July 10th, in compliance with the Madhya Pradesh High Court direction, in which laboratory and histopathological examinations confirmed the presence of skin tissue on the gymnastics belt allegedly used for the hanging. A compliance report has also been sent to the Registrar General of the High Court, and the forensic opinion has resolved a key dispute on whether the gymnastics belt with a metal ring allegedly used for hanging was the actual ligature and whether it matched the injuries on Trisha's neck. The first autopsy could not establish this because the alleged ligature material was not produced before the medical board, prompting the High Court to order a second post-mortem by AIIMS Delhi Medical Board. My colleague Ravishpal Singh is now joining us with more details on this. Ravish, ye jo belt hai jo pehle post-mortem ke liye nahi di gayi thi, ab dusra post-mortem report jab samne aaya hai to usme saaf ho gaya hai ki jo marks hain, jo gale ke marks hain, wo is belt pe paaye gaye hain.
1: बिल्कुल, ये एक बड़ी खबर इसलिए भी जारी है क्योंकि ये सेकंड पोस्टमार्टम करवाना ही इसलिए पड़ा था क्योंकि त्रिशा की जो फैमिली है वो इस बात से सेटिस्फाई नहीं थी कि लिगेचर मटेरियल यानी एलर्जी जिस बेल्ट से त्रिशा ने हैंग किया था वो नहीं दिया गया था पोस्टमार्टम के टाइम, फर्स्ट पोस्टमार्टम के टाइम, और इसी को लेकर के काफी स्ट्रांग रिएक्शन उनकी फैमिली की तरफ से आए थे, जिसके बाद में ये केस सीबीआई को हैंड ओवर किया और ये भी डिसाइड किया गया था कि सेकेंड पोस्टमार्टम होगा. अब सेकेंड पोस्टमार्टम में जो स्किन टिश्यूज हैं, त्रिशा के स्किन टिश्यूज मिले हैं उस लिगेचर मटेरियल उस बेल्ट से, और इससे एक बात कंफर्म हो गई है कि जो बेल्ट है इसी बेल्ट से त्रिशा की हैंगिंग हुई थी. हालांकि इसके आगे जो दिल्ली एम्स है उसने किसी भी तरीके की कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन अभी तक पब्लिकली नहीं एक्सेप्ट की है, क्योंकि उनका साफ तौर से कहना है कि जो केस की सेंसिटिविटी है और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन है वो कहीं टेम्पर्ड ना हो, इसीलिए उन्होंने एक सील बंद एनवलप में अपनी ये जो रिपोर्ट है जो तकरीबन 11 पेजेस की एक फाइनल सबमिशन रिपोर्ट है दिल्ली एम्स की सेकेंड पोस्टमार्टम की, ये सीबीआई को दे दी है. सीबीआई ने इसे टेक ओवर करके इन्वेस्टिगेशन में यूज करना भी शुरू कर दिया है, और माना जा रहा है कि जब नेक्स्ट हियरिंग इस पूरे मामले में होगी तब सीबीआई इसी फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बेसिस पे अपने केस को कोर्ट के सामने आगे पुट करने वाली है. लेकिन एक बात कंफर्म हो गई है कि लिगेचर मटेरियल में टिश्यूज मिल चुके हैं स्किन के त्रिशा के, और जो मार्क है उसके गले में वो मैच कर गया है सेकेंड पोस्टमार्टम के बाद. इसलिए एक तरीके से अगर देखा जाए तो कानून की नजरों से ये एक स्लाइटली रिलीफ है जो अक्यूज हैं गिरीवाला सिंह और समर सिंह उनके लिए. लेकिन अभी भी इन्वेस्टिगेशन इस बेसिस पे भी चल रही है कि अगर ये सुसाइड है भी तो ये सुसाइड के लिए उकसाने का केस भी बन सकता है, इसलिए इस इन्वेस्टिगेशन पे भी फिलहाल सीबीआई काम कर रही है.
0: जी रवीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए. सो दैट्स द लेटेस्ट दैट्स कमिंग इन एज फार एज द त्रिशा शर्मा डेथ केस इज कंसर्न. द neck tissues have been found on the gym belt. Remember, this is the same ligature material which was not given for the first post-mortem, after which the family did not conduct the final rites of Trisha, demanding a second post-mortem, and that eventually happened. And now the report is also out, and as per the second post-mortem report, the neck tissue has been found on this gym belt. And now shifting focus, some more news coming in. A town in Assam has found an unconventional way to crack down on public nuisance, and it's sparking a nationwide debate. The Tinsukia Municipal Board has launched a Hall of Shame campaign using CCTV cameras to capture people allegedly littering or urinating in public. The footage is then displayed on roadside LED screens in an effort to deter repeat offenders. Civic authorities say that the idea is simple. Public account

0: कब से चल रहा है, हो सकता है जो उजागर हुआ हो वो बहुत कम मात्रा पता पड़ी है, लेकिन पूरा, और लोग तो कह रहे हैं जमीन जब खरीदी गई थी उसमें बहुत अहित हुआ था। अब आरोप लगेंगे क्योंकि तो एक बार चोरी पकड़ी जाती है तो शक बहुत दूर तक जाता है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को इस तरह का बयान देना चाहिए। हालांकि बोलते बहुत कम है, लेकिन जब भी वापस देश में आएंगे उनको तो बोलना चाहिए। मैं तो इतना कह रहा हूँ कि जो SIT की जांच है इससे कुछ निकलेगा नहीं, लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अगर जांच होगी तो वह ऊपर तक नाम आएंगे। उसका जनता पर विश्वास दिलाकर खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि हम जांच को अंतिम छोर तक लेकर जाए।
1: यह अपने में एक तरीके का कलंक है, एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा मुझे पूरा विश्वास है।

0: missing JEE Advanced by just 2 marks would have shattered the dreams of many. But for Meerut's Sanket Kumar, it became the motivation to work even harder.
1: उस चैलेंज को दिमाग में रखते हुए मैंने फिर एक साल का ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया. ना ही मैंने किसी कॉलेज में अप्लाई किया, अप्लाई भी नहीं किया, एडमिशन तो दूर, मैंने अप्लाई भी नहीं करा था किसी कॉलेज में. एंड फिर मैंने खुद से ही इसी कमरे में बैठ के अपनी पूरी सेल्फ स्टडी वगैरह करी एंड यहीं पर मैं रहा हूँ. अपने जो प्रीवियस नोट्स थे 11th 12th के, वो मैंने वापस से रिवाइज करे. मैंने फ्रॉम स्क्रैच वापस से अपनी प्रिपरेशन शुरू करी.
0: His perseverance paid off. In 2022, Sanket cracked both JEE Main and JEE Advanced and secured admission to the Indian Institute of Space Science and Technology, where he pursued aerospace engineering.
1: मेरे को IIST में admission मिला, तो वहाँ पे जाके मुझे aircraft से spacecraft तक का जो innovation है उस चीज के मैं इंट्रोड्यूस हुआ. एंड वहां पे जाके मैंने बहुत ज्यादा लाइक स्पेस कंजर्वेटिव पढ़ाई करी, तो उसने मेरे अंदर का इनोवेशन करा कि हाँ, नॉट एयरक्राफ्ट्स, नॉट समथिंग, बट समथिंग रिलेटेड टू स्पेस, समथिंग रिलेटेड टू रॉकेट्स. तो वहां से फिर मैं अपनी प्रिपरेशन मैंने वहां पे शुरू करी.
0: क्वालिफाइंग डायरेक्टली फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन हिज एकेडमिक परफॉर्मेंस, Sanket impressed the ISRO panel with his technical knowledge and has now been selected as a scientist engineer. He will be posted to ISRO's propulsion complex in Mahendragiri, where rocket systems undergo critical testing before launch. His family says his journey is proof that one setback does not define success. From missing JEE Advanced by just 2 marks to earning a place at ISRO, Sanket Kumar's story is a reminder that perseverance can sometimes achieve what talent alone cannot. Bureau Report, India Today.
2: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.

0: watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
1: देश के दो सबसे महत्वपूर्ण शहर में शामिल देश की राजधानी और साथ में देश की आर्थिक राजधानी दिल्ली और मुंबई की हम बात कर रहे हैं और ये दो शहर ऐसे हैं जिसमें अगर हम जो पारंपरिक यातायात का सबसे डिपेंडेबल साधन यानी कि रेलवे उससे अगर हम एक सामान्य ट्रेन से आएं तो 18 से 20 घंटे का समय लगता है और राजधानी अगर हो तो लगभग 16 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन अब पूरे उस परिवहन की परिभाषा को बदलता हुआ एक ऐसा एक्सप्रेसवे दिल्ली और मुंबई के बीच जिसकी चर्चा बहुत होती थी और नितिन गडकरी जी से हम लोग ये सवाल भी पूछते थे कि क्या वाकई संभव है कि दिल्ली और मुंबई 12 घंटे में, और अब जब हम उसके उस सिरे पर खड़े हैं जहां से दिल्ली में चाहे ईस्ट दिल्ली हम लें या फिर दक्षिण दिल्ली लें सबसे कुछ रास्ते हैं जो चढ़ जाते हैं इस पर आकर, ये संभव हो रहा है अब कुछ महीनों में?
2: देखिए अभी तो हम दिल्ली मुंबई हाईवे पर नहीं लगे हैं, पर आप ये जो रोड के ऊपर खड़े उसके नीचे वाला एरिया जो है, मैं ज़्यादा दिल्ली को जानता नहीं हूँ, और एक कालिंदी कुंज वगैरह, ये पहले इस एरिया में मैं पब्लिक मीटिंग के लिए आया था और तब मैंने देखा वहाँ से चलना मुश्किल था,
1: काफ़ी इंक्रोचमेंट
2: वाकई इंक्रोचमेंट थी, ये थी गंदगी थी, नाले थे। अब उस एरिया के ऊपर से ये एलिवेटेड रोड है, ये स्टेट ऑफ आर्ट डिज़ाइन है, ये जो ब्रिज बना हुआ है ऐसे बहुत अच्छा डिज़ाइन है। अब यहीं से दिल्ली से निकल कर डायरेक्ट इस रोड से चढ़कर, हाँ। ये भी रोड तो डायरेक्ट हमारा ये जो जेवर एयरपोर्ट पे भी जाएगा,
1: जेवर एयरपोर्ट भी जाएगा,
2: हाँ, तो ये जेवर एयरपोर्ट का रोड है और बीच में से पलट कर फिर हम लोग दिल्ली मुंबई हाईवे को कनेक्ट हो जाएंगे।
1: अच्छा, तो अभी अभी जिस एरिया में हम दिल्ली के हैं ये रोड अभी अभी खुला नहीं है कुछ दिन के लिए,
2: ये अभी प्रधानमंत्री जी का डेट मांगी है और तुरंत मिलने के बाद ये पूरा हुआ है और करीब 10,000 करोड़ का रोड हमने बनाया है और बहुत सुंदर है। दिल्ली में हम 1,60,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। अभी तो हमने वसंत विहार की टनल भी मंजूर की है
1: जी,
2: 8-9 हज़ार करोड़ की, हाँ। और हम दिल्ली को बहुत कठिन काम है ट्रैफिक जाम से मुक्त करना, पर दिल्ली से ट्रैफिक जाम और पोल्यूशन से मुक्त करना,
1: हाँ।
2: ये हमारी कोशिश है और हम लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं,
1: हाँ। ये उसका एक बड़ा प्रयास क्योंकि नीचे हम वाकई
2: अब देखे ना, ये पूरा गंदगी का नाला है,
1: हाँ।
2: ये पुराना एरिया है,
1: हाँ।
2: वो शाहीन बाग वगैरह जो एरिया था वो नीचे में था
1: जी।
2: और देखो ये किस प्रकार से कितने बड़े समस्या ये काम करते समय, पर हमारे प्लास्टिक पड़ा हुआ है केड़ कचरा से, अब ये पूरा एरिया इंक्रोचमेंट है, झोपड़पट्टी है। हमने यहाँ से ऊपर में आकर देखो ये क्रेन कैसे डाली है,
1: हाँ।
2: कैसे बनाया, बेस बनाया और नाले में घुस कर ये काम किया हुआ है, यानी आप नीचे जाके देखिए आप कि किस कितना कठिनाई में ये काम किया होगा, और ये नाले में हमने ऐसे ब्रिज तैयार किए।
1: तो हम अब एक्सप्रेसवे की तरफ चलते हैं,
2: चले
1: जी। तो इस मैप के हिसाब से यहाँ पर सर रेड वाला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे।
2: अभी अभी हम लोग ये
3: सर हम लोग यहाँ से एंटर किए, ये दिल्ली का रिंग रोड है जो आपका डीएनडी है, वो यहाँ से ये हाईवे आया फरीदाबाद को बाईपास करते हुए, वो ये सोना पे ज्वाइन कर लेगा, ये गुड़गावा है, गुड़गावा सोना रोड है, ये एक्सप्रेस वे यहाँ शुरू होता है, यहाँ मिल जाएंगे सोना पे हम एक्सप्रेस वे,
2: और
3: ये जयपुर
2: इधर से
3: जेवर
1: एयरपोर्ट का,
2: ये
1: मतलब सारी डिस्टेंसेस कम हो जाएंगे,
2: एकदम
3: सिग्नल फ्री है,
2: और ये जो लोग अंदर घुसते थे दिल्ली के, ये सब लोग अभी इधर आएंगे नहीं, इनको डायरेक्ट लिंक मिल गई, दिल्ली का ट्रैफिक काफी कम हो जाएगा, 30-40% ट्रैफिक।
1: सर आप बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं दिल्ली का ट्रैफिक कम करने का,
2: पर आप बताए दिल्ली पेरिफेरल रोड बना,
1: हाँ, हाँ,
2: जितने ट्रक जाते थे अभी बाहर चले गए,
1: हाँ,
2: कम तो हुआ,
1: ठीक है।
2: अगर ये नहीं होते तो ये बात अलग है, कम होने के बाद और नया बढ़ा,
1: हाँ,
2: इसके कारण इफेक्ट जितना आता है लोगों को नहीं आ रहा।
1: एक तो वो कम हुआ, दूसरा मुझे लगता है कि जो दिल्ली के आसपास जो शहर है उनसे दूरी कम हुई, जयपुर हो गया, देहरादून हो गया,
2: दिल्ली देहरादून 2 घंटे में जयपुर 2.25 घंटे में, ये तो बदल एकदम हो गया। अब एग्जिस्टिंग दिल्ली जयपुर रोड का भी ट्रैफिक ज्यादा कम नहीं हुआ, इसका मतलब ट्रैफिक बढ़ा भी बहुत,
1: ट्रैफिक बढ़ा भी है। पर सर 1,00,000 करोड़ इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की,
2: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कीमत 1,00,000 करोड़ की, अब ज्यादा हो जाएगी,
4: 1,10,000 करोड़ से गया है।
1: उस हिसाब का रिटर्न्स क्या, अगर एक आम आदमी सोचे, देखिए सरकार की बात एक होती है, एक होता है आम इंसान सोच रहा है।
4: देखिए ये रिटर्न के हिसाब से नहीं गिरना चाहिए। हाँ। जैसे उदाहरण के लिए अभी एक रिपोर्ट आया IIM बेंगलोर, IIT कानपुर और IIT चेन्नई का, ये एक समय हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट GDP के हिसाब से 16% आती थी।
1: अच्छा।
4: और चाइना की 8%।
1: हाँ।
4: और अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की ये 12% थी। और अभी ये रिपोर्ट ऐसा आया है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% कम हुई है, तो ये एकदम 10% पे आई 6 महीने पहले।
1: हाँ।
4: अभी तो मुझे लगता है वो 9 पे आई होगी, सिंगल डिजिट पे।
1: हाँ।
4: तो हम इंटरनेशनल मार्केट में हमारे आयात निर्यात में हम लोग अगर 6% कॉस्ट कम हो जाएगी तो उतना कॉम्पिटिटिव होंगे। तो मुझे लगता है एक प्रकार से हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, नई इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस और टूरिज्म बनेगा। अब सिंपल उदाहरण बताता हूँ, यहाँ से बद्रीनाथ केदारनाथ का दिल्ली से हमने भी रोड बना दी।
1: हाँ।
4: तो 3 गुना ट्रैफिक पर्यटकों का बढ़ा, कितना तन कर रहा। अब वो सरकार को कंट्रोल करना पड़ा, ये ज्यादा लोग बताइए। अच्छा टूरिज्म जब आता है तो 49% एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए खर्चा होता, इससे रोजगार निर्माण होता है।
1: तो सर अगर मैं एक ट्रक लेकर मान लीजिए मैं जा रही हूँ दिल्ली से मुंबई, तो डीजल के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, पैसों के हिसाब से मेरी कितनी परसेंटेज मेरी बचत होगी?
4: देखो पहली बात तो एक ट्रक दिल्ली से मुंबई जाने के लिए अभी 48 घंटे लगते
1: ट्रक को।
4: अब वो ट्रक जाएगा 18 से 20 घंटे।
1: हाँ।
4: तो उसके करीब 28 घंटे बच गए, तो वो एक महीने में अगर 4 ट्रिप करता होगा तो 7 ट्रिप करेगा। तो एक ही ट्रक की 7 ट्रिप होगी तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। दूसरा, जो चलते समय उतनी मशीन कम चलेगी तो फ्यूल भी बचेगी।
1: हाँ।
4: और फ्यूल बचेगी, कॉस्ट बचेगी, टाइम बचेगा, रिटर्न ज्यादा मिलेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर, और उसके कारण ही लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी।
1: सर फ्यूल की बात आपने की है तो मैं उस फ्यूल की बात करना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ आपसे, जिसके साथ मतलब आपने जब इथेनॉल के बारे में बात करना शुरू किया था, मैं भी समझ सकती हूँ कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को ये चीजें देखनी है, लेकिन आप बहुत पैशनेटली उसके बारे में बताते भी थे। आज जो जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है कि गाड़ियां खराब हो रही हैं, कोई कह रहा है उसका रबर का इस्तेमाल जहां होता है वो गल जाता है, क्या ये सही है या फिर केवल एक डर है, क्या है? क्योंकि कुछ
4: पहली तो बात ऐसी है कि मैं केवल इथेनॉल की बात नहीं करता
1: जी,
4: मैं अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल की बात करता, इलेक्ट्रिक भी मैंने शुरू की
1: जी,
4: अब हाइड्रोजन की भी बात करता हूँ, मिथेनॉल, CNG, मैं ये सब अल्टरनेटिव बायोफ्यूल की इसलिए बात करता हूँ कि हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है, जो हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट का 87% है। आत्मनिर्भर भारत बने, हमें इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े, और इसका फायदा युवाओं के लिए रोजगार निर्माण हो, और इसका फायदा किसान, अन्नदाता, ऊर्जादाता, ईंधन दाता, हवाई ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हाइड्रोजन दाता बने, ताकि गांव गरीब मजदूर किसान को फायदा मिले, इसलिए मैं बात 2004 से कर रहा हूँ। रही बात इसमें फ्यूल कैसा यूज करना, किसको ऐड करना, ये सब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अधिकार में आता है। मेरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में ये जो ऑटोमोबाइल इंजिन है इसके स्टैंडर्ड फ्यूल के हिसाब से तय करना और उसके बारे में रेगुलेशन करके नियम करना, ये मेरे अधिकार में आता है। तो फ्यूल ऐड करना नहीं करना ये होता है, इसका टेंडर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री निकालती है, रेट कैबिनेट में तय होता है। और ये भी आरोप किया गया कि मैं इसके, तो मैं इथेनॉल शुरू होने के पहले ही मैंने शुगर फैक्ट्री शुरू की थी, अब तो मैं देखता नहीं, मेरे लड़के देखते हैं। और टोटल 1500 करोड़ लीटर जो इथेनॉल खरीदी किया जाता है वो 550 इंडस्ट्री है, कोई चावल से बनाता, कोई मक्के से बनाता, कोई शुगर केन जूस से बनाता, कोई मोलास, उसमें हमारा शेयर 0.07% है, यानी 1500 लीटर में 1,70,000 तो अल्कोहल बनाता हूँ बॉटलिंग ब्रांड, तो हम लोग नहीं के बराबर, तो इसका बेनिफिट कोई हमको मिलने का कोई विषय नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम अल्कोहल अपना यूज कर रहे हैं।
1: पर क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
4: पहली बात मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ।
1: हाँ।
4: क्या आपके नजरों में, आप भी पेट्रोल गाड़ी यूज करती है, अब 20% आपके गाड़ी में भी इथेनॉल है, आपको कोई तकलीफ हुई?
5: अभी तक तो नहीं।
4: आपके पेट्रोल की गाड़ी जिसकी इथेनॉल के कारण बिगड़ी हुई है, ऐसे दो लोगों के नाम बता सकते हैं
5: मुझे? अपना पर्सनल जान पहचान के?
4: हाँ, कोई भी बताओ, जो भी देश का बताओ, कुछ भी बताओ। कोई
5: नहीं, यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं।
4: मैं आपको बताता हूँ, ये पेट्रोल की गाड़ियाँ, इसमें जो गाड़ियाँ जा रही है, ये जो फ्लेक्स इंजन है, इसमें 40% शेयर मारुति सुजुकी का है। उनके पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया, टोयोटो के पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया, अभी कोई टाटा महिंद्रा किसी के पास कोई कंप्लेंट नहीं आया। दूसरी बात, इसका इंश्योरेंस कवर है, गारंटी कंपनी दे रही है, कोई गारंटी में फर्क नहीं पड़ा। हाँ, एक बात जरूर है कि गाड़ी का मेंटेनेंस होते रहता है, दो चार तास कोई पार्ट्स लगता है, कोई निकलता है। अभी एक पटना में घटना हुई कि टोयोटो कंपनी पर आरोप लगाया, वो इनोवा गाड़ी थी, वो खराब हुई वगैरह। तो उन्होंने कहा गाड़ी दो हमको, हम चेक करना है। बोले नहीं देता। तो उन्होंने कहा नहीं देंगे तो हम पब्लिक डिक्लेयर करेंगे। फिर उसने गाड़ी दी, चेक किया तो उसमें पानी एडल्ट्रेशन किया हुआ मिला।
5: सर कोई खुद से थोड़ी मिलाएगा, मतलब
4: आप ही बता। कि फिर बाद में उसका टेस्टिंग हुआ। हाँ। अब वो FIR दर्ज की उसके खिलाफ। अभी ये क्या है कि ये पॉलिटिकल एक मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए एक प्रयास है। और मैं तो आह्वान करता हूँ, मैंने कल ही कहा कि जिसमें की गाड़ी पेट्रोल की इथेनॉल डाली खराब हुई है, वो एक तकरार तुरंत डीलर के पास करे। और एक तकरार हमारी मिनिस्ट्री ने नियम तैयार की है इसके बारे में, हमें तकरार करें, हम इंक्वायरी करेंगे, आपको राहत देंगे।
5: आपको लग रहा है सेफ है इथेनॉल?
4: हाँ। देखिए, अमेरिका में इथेनॉल है।
5: हाँ।
4: ये थाईलैंड में है, ये जापान में है, ये जर्मनी में है, ये ब्राजील में है, ये हिंदुस्तान में है।
5: हाँ।
4: स्वीडन में है, ये 11 देशों में इथेनॉल यूज होता है। अब जिस देश में अपना खुद का पेट्रोल डीजल सस्ता अवेलेबल है, वो यूज करने का कोई कारण?
5: सर ये भी समझाइए ना, क्या ये सचमुच में पायलट प्रोजेक्ट है, क्या अभी कोशिश हो रही है या ये
4: पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोई इसको भी सेंटर पे किया गया। कोई भी गाड़ी आज मेरे मन में आया मैंने डाल दिया इथेनॉल, ऐसा नहीं होता। 4-4 साल इसके एक्सपेरिमेंट हो गए, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट देहरादून, ARAI, CICAT, ये सब लोग इसका टेस्टिंग 4-4 साल करते हैं। 2-2 लाख मीटर का टेस्टिंग होने के बाद फिर उसको सर्टिफाई करते हैं। और आपको ये पूरी गाड़ियाँ वर्ल्ड में, यही टोयोटो की है, हुंडई की है, मर्सिडीज की है, ये अपने जो जो जितनी गाड़ियाँ आज भारत में है, सुजुकी की है, यही तो वर्ल्ड में है। तो ये कंपनियाँ वर्ल्ड रेपुटेशन है उनका, क्या ये बिना सोचे समझे किसी के कहने पर ऐसे ही डाल देंगे, ऐसा आपको लगता है क्या? सब टेस्टिंग करते उसके बाद ही आता है, ये कोई पायलट प्रोजेक्ट या प्रायोगिक तत्व पर नहीं आया। एक वकील ने प्रेजेंट करते हुए कहा, उसकी बातों को मिसइंटरप्रेट किया गया।
5: तो सर इसमें मतलब अगर हम बाकी रोड से कंपेयर करें, एक्सप्रेसवे से कंपेयर करें, तो इसमें कौन सी एक ऐसी चीज है, कोई नई टेक्नोलॉजी या ऐसी चीज जो इसे बाकियों से अलग और एक तरीके से?
4: आपने जो लोहे का ब्रिज देखा ना?
5: हाँ।
4: वो अपने आप में बहुत बड़े साइज का अच्छा डिजाइन किया हुआ है। वैसे हमारे हर प्रोजेक्ट में भी हम लोग जो जितनी नई नई टेक्नोलॉजी है उसको स्वीकार कर रहे हैं। वैसे इसमें एक टेक्नोलॉजी अभी आई नहीं है।
5: हाँ।
4: ये दो पियर है ना?
5: हाँ।
4: इसके बीच में हमारे यहाँ केवल 30 मीटर डिस्टेंस होता है।
5: अच्छा।
4: अभी हमने एक मलेशिया से और सिंगापुर से एक टेक्नोलॉजी लाई है कि ये 120 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस।
5: अच्छा।
4: और एक ही पिलर के बीच में ऊपर का बीम स्टील फाइबर में कास्ट होगा।
5: हाँ।
4: और अभी हम 50,000 करोड़ के 5 ऐसे ब्रिज बना रहे हैं।
5: हाँ।
4: नीचे में कुना में।
5: हाँ।
4: नीचे में रोड, ऊपर में एक ही पिलर पर ब्रिज।
5: हाँ।
4: उसके ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में मेट्रो।
5: अच्छा।
4: 4 फ्लोर 3 फ्लोर के 50,000 अभी मंजूर हो गए।
5: हाँ।
4: अब मैं भूमि पूजन के लिए भी जाने वाला हूँ।
5: हाँ।
4: मुख्यमंत्री जी का टाइम है।
5: और ये जो हम इस एक्सप्रेसवे की खासकर बात करते हैं, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अलाउड रहेगी इस पर?
4: हाँ, हाँ।
5: सर सेफ्टी को लेकर कोई इशू नहीं होगा?
4: अभी तो फॉरेन में 200-225 किलोमीटर तक अलाउड।
5: हाँ।
4: वैसे हमारे यहाँ भी स्पीड और बढ़ सकती है।
5: हाँ।
4: पर हमने हमारे यहाँ के ट्रैफिक डिसिप्लिन और लोगों का अप्रोच देखते हुए हमने 120 तक सीमित किया।
5: अच्छा, 120 में सेफ रहेगा इस
4: सेफ
5: हाईवे पर, प्लस जो वाइल्ड लाइफ वाले कॉरिडोर है उनमें वाइल्ड लाइफ
4: तो आपने देखना चाहिए। हमने अभी आज आप मेरे साथ आएगी
5: हाँ।
4: तो जो राजस्थान का फॉरेस्ट है
6: हाँ। रणथंभौर
4: में तो ऊपर में फॉरेस्ट है, नीचे में टनल है। तो एक कार्टून मैंने देखा था
5: हाँ।
4: एक बच्चा अपने माँ को बता रहा गाड़ी बैठ, देखो माँ टाइगर बैठा तो टाइगर ऊपर है, फॉरेस्ट ऊपर है। और हमने हर जगह पर बहुत अच्छा, अभी देहरादून को जाके देखा
5: वहाँ पर
4: पूरे फॉरेस्ट के अंदर अच्छा, उसका भी नोटिंग हुआ है, कैमरे लगा है कि कितने जानवर इधर से उधर गए, उसका रिकॉर्ड है, कितने हाथी गए, कितने हिरण गए, सबका रिकॉर्ड आ गया।
5: अच्छा,
4: और हमने उधर पेश में भी बनाया, नागपुर जबलपुर सुंदर बनाया। हम लोग इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को तरफ ध्यान देते हैं, पेड़ को ट्रांसप्लांट करते हैं, वाइल्ड लाइफ को लिए सुविधा करके देते हैं। और हमने इकोलॉजी एनवायरनमेंट को प्रभी हम बाम्बू के क्रैश बैरियर बना रहे हैं। हम डांबर में हम बिटुमिन में प्लास्टिक और रबर डालकर वो मिक्स तैयार करने की कोशिश करते हैं, बायो बिटुमिन
5: हाँ।
4: ये परली है ना राइस स्ट्रॉ
5: हाँ।
4: इससे बायो बिटुमिन बनेगा, वो हम यूज करने की बात कर रहे हैं।
5: सर अगर एनवायरनमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट की बात करते हैं तो भारत दुनिया के देशों में रैंक कर रहा है अभी।
4: हम बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत जल्दी हम दुनिया के आगे जाएंगे। यही तो बायो फ्यूल अल्टरनेटिव फ्यूल की बात है
5: हाँ।
4: अगर आगे जाना होगा तो प्रदूषण को कम करना पड़ेगा और इसलिए फॉसिल फ्यूल को कम करना है। पूरी दुनिया फॉसिल फ्यूल को कम कर रही है और वही तो पर्यावरण की रक्षा करने के लिए आवश्यक है। दिल्ली में इतना एयर पोल्यूशन है, ये पंजाब और हरियाणा में 280 लाख टन परली जला देते हैं। ये पंजाब और हरियाणा का ऑफिशियल डाटा है। अब वो परली से बायो सीएनजी बनेगा, हवाई ईंधन बनेगा, इथेनॉल बनेगा और परली का भाव 2500 रुपये टन हो गया। तो हमने वेस्ट में वैल्यू क्रिएट की। हमने गाजीपुर टेकड़ी की 7 मीटर हाइट कम की, वो पूरा कचरा हमने सेग्रीगेट करके रोड में डाला। अब दिल्ली की मैं 2027 तक हमने निर्धार किया है कि हम लीगेसी वेस्ट देश की समाप्त कर रहे हैं, स्वच्छ भारत बनाए
5: 2027
4: एंड तक।
5: अच्छा,
4: ये पूरे दिल्ली के टेकड़ियाँ खाली कर देंगे, वहाँ दिल्ली महापालिका या राज्य सरकार गार्डन बना सकते।
5: सर बारिश इतनी तेज हो रही है, आपने ये भी कहा कि आपको टारगेट कर रहे हैं लोग, एक और चीज को लेकर बहुत ज्यादा टारगेटिंग हो रही है वो ये है जो नए नए एक्सप्रेस वेज जो बन रहे हैं उनमें गड्ढे, उनको नुकसान।
4: मैं आपको प्रार्थना करता हूँ
5: जी,
4: ये हमारे हाईवे में जितने गड्ढे हैं उसके ऊपर आप कार्यक्रम करिए और दिखा दीजिए। देखो गड्ढे नहीं है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, हेवी ट्रैफिक के बाद 2 साल 3 साल 4 साल कभी ना कभी प्रॉब्लम आते हैं, पर आप मुझे बताइए आज जो लोग ही आपको फीडबैक देंगे इतना रोड अच्छा है, हमें 2 घंटा 3 घंटा नीचे हमारे बच गए, तो कमियाँ है और कमियाँ हम इम्प्रूव ही कर रहे हैं। और अभी हमारे पास एक एक्सरे मशीन जैसा है कि हम कॉन्ट्रैक्टर का, ऑफिसर का और रोड का एक्सरे निकाल के अब हम सब निकाल सकते हैं कि भाई गड़बड़ क्या है, राइडर क्वालिटी कैसी है, एक्सपांशन जॉइंट कैसे है, ये कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ है, यहाँ पेड़ लगे हैं तो कौन से है, कौन सी स्पेसीज है, हम सबका। मैं अभी पिछले महीने में पूरा महीना मैंने 1,950 प्रोजेक्ट का रिव्यू लिया, कल भी मैंने करीब 23 एक्सप्रेस हाईवे का रिव्यू लिया अधिकारी कॉन्ट्रैक्टर सबके साथ। तो मैं ये नहीं कहता कि कहीं कमी हो सकती है, चल रही है।
5: पर आप लोग एक्शन लेते हैं क्योंकि एनएचआई ने एक कॉन्ट्रैक्टर का टर्मिनेट किया है,
4: हजारों जो मिलता उसके ऊपर एक्शन करते किसी को छोड़कर,
5: क्योंकि कुछ लोगों ने वीडियो सवाई माधोपुर के नजदीक कुछ नुकसान का टाला था।
4: देखिए हमें क्वालिटी के बारे में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर
5: हाँ।
4: मैं ये कह सकता हूँ जो आपसे अभी चर्चा हो रही थी कि अमेरिका में भी गड्ढे हैं, तो मैं पहले कहता था कि अमेरिका से अच्छे रोड बनाएंगे और अब हाईवे नेटवर्क नेशनल हाईवे नेटवर्क में वर्ल्ड में नंबर एक पर पहुंचा। और मुझे अमेरिका से आए हुए लोग कहते हैं कि तुम ये अमेरिका के जैसे रास्ते की क्या बात कर रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो। तो बोला क्या हुआ, तो बोले हमारे रास्ते अमेरिका से भी अच्छे बने, इसका मतलब हमारे यहाँ कोई गलती नहीं, ऐसा नहीं, कई गड्ढे मिल सकते हैं, हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं।
5: तो कई कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब ये इतना लंबा स्ट्रेच है इसमें कई कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं, आप लोग कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सोशल मीडिया के जरिए नहीं बल्कि खुद से ये जानकारी हो कि ये खराब है?
4: हमारे इसमें
5: हाँ।
4: ये BOT हाइब्रिड एनुटी सब प्रोजेक्ट में 10-10 साल तक उस रोड को मेंटेन करने की गारंटी, डिफेक्ट लायबिलिटी उनके पास है, कुछ होगा तो उनके जिम्मेदार, उनकी बैंक गारंटी हमारे पास पड़ी है, हम जब्त करेंगे,
5: कार्रवाई करेंगे। जो नुकसान अगर दिखा है वो भरेंगे।
4: हाँ बिल्कुल, उनका उनकी जिम्मेदारी है। बाद में इनका हम रेटिंग कर रहे हैं अभी,
5: हाँ।
4: बड़े बड़े कंपनियों को काम दिया है, हाँ। और खराब काम करेंगे तो इनको सिस्टम से निकाल देंगे, ब्लैकलिस्टेड कर देंगे।
5: अच्छा,
4: हाँ
5: तो क्वालिटी कंट्रोल दुरुस्त,
4: क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं जी।
5: और सर एक जो वो कहते हैं ना कि समय के साथ जो डिजाइन, उसका डिजाइन की जो कितने समय तक वो आपके लिए प्रासंगिक रहेगी, वो डिजाइन जरूरतें बदलती हैं, उस हिसाब से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को अगर मैं समझना चाहूँ।
4: देखिए प्रॉब्लम एक है,
5: हाँ।
4: कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन रिसर्च रोज बदलता है,
5: हाँ।
4: और सरकार में नई बात को एक्सेप्ट करने के लिए बड़े रिलक्टेंट रहते हैं, क्योंकि कल कुछ कम ज्यादा हुआ तो क्या होगा। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि नए प्रयोग करेंगे तो 10 में से 4 प्रयोग में कुछ अड़चन आ सकती है, तुरंत मीडिया उसको इलाज से, कोई करने के लिए तैयार नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। द मिस्टेक्स आर बोनाफाइड फॉरगिव देम, इफ द मिस्टेक्स आर मालाफाइड सैक देम, ये हमारी नहीं।
5: सर ये वाले जो आपका एक्सप्रेस वे है, इसमें 93 PM गति शक्ति, इकोनॉमिक नोड्स, 13 बंदरगाह, 8 बड़े एयरपोर्ट और 8 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। इस
4: हमारे प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति का योजना बनाई,
5: हाँ।
4: और हर प्रोजेक्ट को उस पर मैप करके पोर्ट्स, लॉजिस्टिक पार्क, एयरपोर्ट, स्टेशंस, इसको सबको स्टडी करके हम उसकी कनेक्टिविटी, उसका प्लानिंग करते हैं कि कहाँ कैसे जाने से किसको किसको। अभी पोर्ट में हमारे कंटेनर आते हैं,
5: हाँ।
4: अभी ये सब दिल्ली मुंबई हाईवे से ये पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल और दिल्ली को आने वाले सब कंटेनर जो कांडला और मुद्रा से आते हैं,
5: हाँ।
4: वो अभी मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से आएंगे, वो जल्दी आएंगे, कॉस्ट कम होगी।
5: हम उम्मीद करते हैं कि बारिश थोड़ी रुके और हम अगले जो आपका रिव्यू पॉइंट है वहां पर हम तो ये एक्सप्रेसवे पूरा खुलने का इंतजार सबको है। हम इस समय एक ऐसी रेस्ट एरिया में रुके हैं, बारिश बहुत हो रही है इसलिए शेड है, लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह मिल जाती हैं। यहाँ पर ईवी के रिचार्ज का पॉइंट भी है और जो अब एक नॉर्म हो चुका है। लेकिन नितिन जी, अगर हम ये सोचें कि ये कब तक आपका टारगेट है, कब तक बिना किसी डाइवर्जन के, बिना इस पे से उतरे?
4: अभी तो लगभग ये बड़ौदा के आगे तक पूरा हो गया
5: जी,
4: केवल मुंबई के भी एक पैकेज में और इधर गुजरात में दो पैकेज में प्रॉब्लम है,
5: हाँ।
4: वो कॉन्ट्रेक्टर फेल हो गया, हमने टर्मिनेट कर दिया।
5: अच्छा,
4: वही है, बाकी 3 पैकेज छोड़कर बाकी लोग लगभग 80% काम पूरा हो।
5: आज जिस तरह के इंस्पेक्शन के लिए आप निकले, रिव्यू के लिए निकले, ऐसे आप निकलते रहते हैं?
4: निकलते रहता हूँ, क्योंकि आपको एक बात बताता हूँ कि हम जब लोग प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो मैं आज बहुत सी बातें मैं समझ गया हूँ, कुछ बातें आपके सामने बोल सकता हूँ, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं इसमें सब बातें समझ गया हूँ और मैं इसके ऊपर वर्क करके फिर जब पूछूंगा क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्या हुआ, तो इसका जब पता चलता है अधिकारी और कॉन्ट्रेक्टर को, तो अवेयरनेस बढ़ता है। अभी ये जो हमने मशीन है, अभी जो मैं देखने लैब ले जाऊंगा, ये एक्सरे मशीन है रोड का, मुझे कहाँ गड्ढा है, कहाँ स्लोप है, कहाँ राइडिंग क्वालिटी खराब है, या प्लांटेशन कितना हुआ है, स्ट्रक्चर्स कहाँ है, रोड पर कौन खड़े, एवरीथिंग मेरे पास आ जाएगा। AI का उपयोग किया
5: उस एक मशीन के साथ,
4: वो AI ये भी बताएगा कि अगले 2 महीने के बाद रोड खराब होने वाला है क्या, उसमें प्रॉब्लम क्या है, ये भी आ जाएगा।
5: अच्छा,
4: हाँ, ये सब मशीन अभी मैं जो आपको मशीन दिखाऊंगा,
5: हाँ,
4: उसमें एवरीथिंग इज देयर।
5: पर एक टारगेट के रूप में अगर देखें, लगभग 1 साल उससे पहले आप
4: ये रोड का
5: जी, जब वो पूरा खुल जाए, जब 12 घंटे, मतलब 12 घंटे
4: उसको 1.5 साल लगेगा,
5: 1.5 साल के करीब लग जाएगा। और इतना महंगा रोड, टोल के लिए भी उतनी ही जेब खाली करनी होगी।
4: नहीं, अभी तो हमने सस्ता कर दिया ना,
5: हाँ।
4: 3,000 रुपए में 200 टोल फ्री है, तो 15 रुपए में आ गए टोल, तो लगभग तो कोई प्राइस ही नहीं उसका।
5: अच्छा,
4: जो 150 रुपए भरते थे,
5: हाँ।
4: वो 15 रुपए में आ गया, तो कार वालों के लिए नहीं है, और बाकी ट्रक वालों के लिए तो उनका सेविंग भी है ना, फ्यूल का सेविंग है, टाइम का सेविंग है, उसमें उनका फायदा भी है।
5: चलिए नितिन जी, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये एक्सप्रेसवे लोगों के लिए खुल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा हिस्सा हमें दिखाने के लिए, इसका पार्क हमें बनाने के लिए।
4: बहुत
5: धन्यवाद।
4: थैंक यू।
0: watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
7: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music. Your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.

0: ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का अनर्गल आरोप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी ने लगाया है। हम इसकी कठोर निंदा करते हैं और यही बात हम उनसे कहते हैं कि या तो वे इस विषय का साक्ष्य रखें अथवा वो अपने बयान के लिए माफी मांगे।
1: बार बार ये कहना कि अगर मोदी साहब सहयोग ना करते तो जम्मू कश्मीर की सरकार घुटने के बल आती, ये उन्होंने कई बार कहा है, लेकिन आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही विवादास्पद बयान श्री उमर अब्दुल्ला साहब ने किया है। 20 करोड़ 30 करोड़ का जिक्र उन्होंने किया और ये कहा कि उनकी सरकार गिराने की साजिश हो रही है, ये कतई सत्य नहीं है, ये पूरी तरीके से असत्य और गुमराह करने वाला बयान श्रीमान उमर अब्दुल्ला साहब ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में जब भी सरकार बनाएगी अपने दम से सरकार बनाएगी।
2: Earlier, Jammu and Kashmir Chief Minister Umar Abdullah stepped up his attack on the centre over the delay in restoring statehood as well, announcing a statehood protest. Umar Abdullah said the demand will continue until Jammu and Kashmir regains its full constitutional status. Listen in to what the Chief Minister said.
3: हमने सड़कों पे बात करना शुरू किया, फिर कहते थे अब आपको जम्मू कश्मीर में बात करके ये मिलेगा नहीं, ठीक? अब हम जंतर मंतर जा रहे हैं, अब ये हमें कहते ना जंतर मंतर से आपको रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा। खुदारा फिर ये बीजेपी वाले बताए ना मुझे क्या ट्रंप के पास जाना पड़ेगा व्हाइट हाउस में अमेरिका रियासत का दर्जा लेने के लिए। अगर मुझे अपने मुल्क के राजधानी में जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा की बहाली नहीं मिलेगी तो कहिए हम लोग टिकट करेंगे, हम अमेरिका जाके ट्रंप साहब के घर के बाहर एहतजाज करके वहां से स्टेटहुड मांग लेंगे, दे दीजिए।
2: Shifting focus to a different story, but a controversy which has been gaining momentum, not just in India, but globally at this point. The controversy surrounding Diljit Dosanjh starrer Satluj has intensified further at this point. Its Union Minister Ravneet Singh Bittu, who has issued a direct challenge to the film's makers. Bittu has asked the makers to publicly present evidence, official records and judicial findings to support the film's claim of 25,000 missing or illegally cremated bodies in Punjab. He said filmmakers cannot invoke creative freedom to portray disputed figures as established historical facts. Satluj, a film blocked by the censor board and taken off the OTT, has become the biggest flashpoint and a political one at that in Punjab. And remember, just a year ahead of elections in the very state. The movie is based on the life of human rights activist Jaswant Singh Khalra and covers the turbulent period of terrorism and extrajudicial killings that marred the state.
4: ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪਾਤੀ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਹੂਗੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਟਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰ ਫਿਲਮ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ ਦਲਜੀਤ ਦਸਾਂਝ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੀ ਪਿਕਚਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਓ ਟੀ ਟੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਨਾ, ਓਵਰ ਦਾ ਟੋਪ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਵਰ ਦਾ ਟੋਪ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਟੋਪ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦੇਣ, ਲੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾਈ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
2: Aman Bhardwaj joining me on the broadcast with more details on this very story. Aman, this has been a controversy and, you know, this has not been a new controversy. It's been there since the very first time this movie was released with a different name. Now the name has been changed. It's been released on Z5 and then it's been taken off from that OTT platform. And now it's becoming a bigger political flashpoint at this point that the politicians come out to say that creative freedom cannot be used as an excuse of sorts to distort

0: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
1: कब से चल रहा है, हो सकता है जो उजागर हुआ हो वो बहुत कम मात्रा पता पड़ी है, लेकिन पूरा और लोग तो कह रहे हैं जमीन जब खरीदी गई थी उसमें बहुत अहितपूर्ण हुआ था। अब आरोप लगेंगे तो एक बार चोरी पकड़ी जाती है तो शक बहुत दूर तक जाता है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को इस तरह का बयान देना चाहिए। हालांकि बोलते बहुत कम है, लेकिन जब भी वापस देश में आएंगे उनको बोलना चाहिए। मैं तो इतना कह रहा हूँ कि जो SIT की जांच है इससे कुछ निकलेगा नहीं, लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अगर जांच होगी तो वह ऊपर तक नाम आएंगे। उसका जनता को विश्वास दिलाकर खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि हम जांच को अंतिम छोर तक लेकर जाएं।
2: यह अपने में एक तरीके का कलंक है, एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा मुझे पूरा विश्वास है।

0: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered. With 90s hits, jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा. आप अपना देख लो.
2: फ्रेंच परफ्यूम्स बाय चोबा, अ फ्रेग्रेंस दैट लास्ट्स लॉन्गर देन 10 आवर्स, सो आई कैन बी माय सेल्फ अ लिटिल मोर. फ्रेंच परफ्यूम्स बाय चोबा, फॉर हिम एंड हर.

0: The SIT's preliminary findings only intensified the controversy. More details of alleged donation theft emerged, arrests were made, and allegations grew. And so did the political battle. While Akhilesh Yadav and the opposition sharpened their No Dharm, No Sharm attack on the BJP and RSS,
1: सरकार ने एसआईटी जरूर बनाई है, लेकिन क्या एसआईटी को निष्पक्ष काम करने देंगे, ये भी एक सवाल है बड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया है तो धर्म से ज्यादा उन्हें धन से प्यार है।
2: पता तो चला आपको, सब कुछ पता था, लेकिन आप धृतराष्ट्र की तरह चुप रहे, आंखों पे पट्टी बांधे रहे, और जब मजबूरी हो गई, बहुत ज्यादा मुद्दा उठने लग गया, तो आपने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक एसआईटी बना दी। एसआईटी बिना एफआईआर की एसआईटी बन कैसे सकती है? तब तक एफआईआर ही नहीं हुई थी। उसी दिन देश के लोगों को पता चल गया था, जब आपने एसआईटी बनाई थी, कि प्रधानमंत्री जी लीपापोती कर रहे हैं।
0: Chief Minister Yogi Adityanath and BJP Chief Nitin Naveen reminded the opposition that those who once questioned Lord Ram's very existence could not now preach faith. Even the 1990 Ayodhya firing incident was invoked time and again by the BJP.
3: Congress ko bolne ka koi adhikar nahi. Jo Congress Ram ke astitva ko nakarti thi, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वे आस्था की कौन सी बात कर रहे हैं? जो धार्मिक हिंदू विरासत से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल पर खर्च कर देते थे, वे लोग कौन सी आस्था की बात कर रहे हैं?
4: ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर।
0: The RSS too expressed its dismay over the alleged donation theft. RSS General Secretary Dattatreya Hosable indirectly hit back at the opposition and claimed that anti-Hindu and anti-national forces are seeking to malign the Hindu dharma by exploiting this unfortunate incident.
5: Rashtriya Swayamsevak Sangh sampurna Hindu samaj se bhi aahvan karta hai ki is kathin kshan mein vah avashyak dhairya aur sanyam ka parichay dein तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे।
0: As the probe gathered pace, the focus shifted from politics to accountability. Under pressure, General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra stepped down on moral grounds. The Ram Mandir Trust accepted their resignations, signaling the beginning of a leadership reset. The trust then appointed retired IFS officer and trustee Krishna Mohan as its acting general secretary. Remember, it was Krishna Mohan whose police complaint led to the registration of an FIR over the alleged donation theft.
6: इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले, इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे।
0: As the overhaul began, Champat Rai took a vow of silence until the final report is out. For now, the probe continues. The leadership has changed, but the trust deficit remains. And as Uttar Pradesh heads towards 2027, the politics of Ram Naam could once again shape the electoral narrative, and its impact could extend far beyond Ayodhya. Bureau Report, India Today.
7: And the questions that are not stopping at Ayodhya. In fact, a fresh round of allegations that are surfacing when it comes to temple donations, even from Badrinath. And that is calling for a tighter oversight when it comes to religious trust and donation systems. Is this an isolated case or probably the start of a larger conversation when it comes to accountability and transparency of India's biggest places of worship? That's next.

0: Now, the Ram Mandir donation theft case has snowballed on two particular paths, and that's going on parallelly, let us tell you, politically speaking and probe-wise. Politically speaking, the opposition and the BJP are consistently trading sharp accusations at each other, while on the other hand, as the probe widens, the Temple Trust has begun the search for a new CEO, Chief Executive Officer, and as well as rolled out sweeping administrative and security reforms, while the Congress has stepped up its attack. Congress leader Sachin Pilot alleged irregularities even in the Ram Mandir land purchase earlier, urged Prime Minister Narendra Modi to address the nation with regards to this particular matter, questioned the credibility of the SIT probe and demanded that the investigation that's being done, that be monitored by a Supreme Court judge instead. RSS, on the other hand, has expressed deep anguish over the donation counting irregularities at the Ram Mandir, voiced confidence in the ongoing SIT probe, and urged the Ram Mandir Trust to ensure such incidents never recur while safeguarding the faith of millions of devotees. Meanwhile, the process to appoint a new CEO for the Ram Mandir Trust has officially begun. A three-member search committee held its first meeting yesterday, finalized the eligibility criteria and invited applications till July 18th. Now, shortlisted candidates will be interviewed before a CEO is appointed for an initial three-year term. And amid this, the temple security has also been significantly tightened. 13 new CCTV cameras have been installed, 27 additional SIS personnel deployed, police posted at key locations, and the entire donation counting process brought under continuous video surveillance. Also, at the same time, staff that will be handling the donations will also be wearing pocketless uniforms.
1: यह अपने में एक तरीके का कलंक है, एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है।
2: राम मंदिर बनाने की भूमिका भी आरएसएस ने किया। ये जो लोग आज हिमायती बन रहे हैं, वो राम भक्तों पे गोली चला रहे थे, कोई राम के अस्तित्व को नहीं स्वीकार रहे थे, कोई राम सेतु को नहीं मान रहे थे। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि वैसे लोगों जिनका बोलने का कोई नैतिक आधार नहीं, वो आज बोल रहे।
3: सबको पता है कि इनकी आस्थाएं कहाँ हैं, और इन्होंने कभी एक अक्षर नहीं बोला। जब सनातन को HIV एड्स बोला जा रहा था, डेंगू बोला जा रहा था, तब इनके मुंह से एक अक्षर नहीं फूटा। आज यकायक इनके मन में राम भक्ति जाग पड़ी है। वैसे तो हम स्वागत करते हैं, परंतु सब जानते हैं कि ये कैसे राम भक्त हैं।
4: राम मंदिर की जो घटना है, उस पर सरकार कड़ा नजर रखा है, इंक्वायरी हो रही है। इस प्रकार काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और यूपी सरकार इसका बराबर छानबीन करके दोषियों को सजा दे।
5: रामला का जो चोरी बनेगा, अपने आप चोर बन जाएगा, जेल में पहुंच जाएगा, उसकी फांसी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जो निर्णय राउंड के लिए रामला पर विश्वास है, इसलिए उनको सफलता मिली, देखे जेल में चले गए।
6: क्या कहते हैं हमारा भी जो आरोपी है, या जो जांच चल रही है, अब अंतरिम रिपोर्ट भी
5: जो रामला को नहीं जानते हैं, वो तो बोलेंगे, हमेशा ही बोलेंगे। रामला के यहाँ कोई कमी नहीं है, सब ठीक चल रहा है।
7: कब से चल रहा है, हो सकता है जो उजागर हुआ हो वो बहुत कम मात्रा पता पड़ी है, लेकिन पूरा, और लोग तो कह रहे हैं जमीन जब खरीदी गई थी उसका बहुत अहित हुआ था। अब आरोप लगेंगे, तो एक बार चोरी पकड़ी जाती है तो शक बहुत दूर तक जाता है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को इस तरह का बयान देना चाहिए। हालांकि बोलते बहुत कम है, लेकिन जब भी वापस देश में आएंगे उनको बोलना चाहिए। मैं तो इतना कह रहा हूँ कि जो SIT की जांच है, इससे कुछ निकलेगा नहीं, लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अगर जांच होगी तो वह ऊपर तक नाम आएंगे। उसका जनता पर विश्वास दिलाकर खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि हम जांच को अंतिम छोर तक लेकर जाएंगे।
8: Absolutely, we are protecting Lord Ram from the BJP. The BJP is now Babar Janta Party.
9: Sir, West Bengal government.
8: The UCC debate the BJP is bringing up only to distract the country from the Ram Mandir loot. We will not let that happen. Let's debate UCC on its merits and we will support it.
9: The Congress has demanded the Supreme Court investigation into this.
8: Absolutely, all of us are discussing that, and Supreme Court has to come in with a fair probe for Ram Mandir loot.
10: In the meeting, Everyone expressed grief over the incident of irregularities in counting of the donation of box offerings at the Sri Rama Janmabhoomi Mandir and expressed confidence that the ongoing SIT and police action initiated at the request of Kirthakshetra Nyas will reach a decisive turn. It was expected of Kirthakshetra Nyas to ensure that no such incident happen in future which could hurt the reverence and the deep faith of all Ram Bhaktas towards the Ram Mandir.
11: जिस तरह से बीजेपी का चेहरा सामने आया, भगवान राम के अयोध्या मंदिर चढ़ावे का जो चोरी हुआ है उस पर जो बड़ा काला धब्बा लगा है, दाग लगा है, ये हर लोग जवाब मांग रहे हैं कि ये भगवान राम को राजनीति कर सत्ता में आ गए, भगवान के नाम को बेचा और उनके चढ़ावे का भी चोरी कर लिया।
12: अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बात यह है कि ये पूरा जो भ्रष्टाचार हो रहा था, चंदा चोरी हो रहा था, किसके साम्राज्य में, किसके मैं कहती हूँ नेतृत्व में चल रहा था, क्यों उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों क्या दो इस्तीफे मिलकर आपका काम हो जाता है, 5-6 लोगों को पकड़ कर आपका काम खत्म हो गया यहीं पे, और फिर ध्यान भटकाने का काम करेंगे, हम CEO अपॉइंट करेंगे। अरे CEO आपको तभी अपॉइंट कर लेना चाहिए था जब आपके मन में अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और सच्ची श्रद्धा और प्रेम भगवान श्री राम के लिए होता, और सही मायने में जो भगवान श्री राम के सही श्रद्धालु हैं उनको उसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए, ना कि जो भारतीय जनता पार्टी, VHP और RSS के श्रद्धालु हों।
13: A series of maternal deaths has put Rajasthan's public health care system under serious and intense scrutiny. In Rajasthan's Bhilwara, 5 women have died within just a matter of 6 days between July 5th and July 10th after undergoing cesarean deliveries at Mahatma Gandhi Hospital. Their families have alleged medical negligence and raised concerns over infection control, but hospital authorities have denied any link, maintaining that the deaths were caused by medical complications. An expert committee has now been constituted to investigate the cases. Over the same time period, at the Mahatma Gandhi District Hospital in Rajasthan's Banswara, another 4 women, including a minor, having died in just 4 days. 5-member medical panel is now probing those deaths as well. Officials say 2 patients were brought in critical conditions while 2 deaths followed C-sections. The minor in this case died after complications from an abortion procedure. The latest cases just comes in weeks after another tragedy in Kota, where 5 women died after childbirth. With 9 maternal cases of death reported across 2 hospitals in just 6 days and a string of similar incidents taking place in the last few months, serious questions are now being raised over the maternal health care in the state. The old debate of how far can one push creative freedom has resurfaced again. How so? Well, the controversy surrounding Diljit Dosanjh's Tara Satluj has intensified further over the same question. It's Union Minister Ravneet Singh Bittu who has now issued a direct challenge to the film's makers. Bittu has asked the makers to publicly present evidence, official records and judicial findings to support the film's claim of 25,000 missing or illegally cremated bodies in Punjab. He said filmmakers cannot invoke creative freedom to merely portray disputed figures as established historical facts. Satluj, a film blocked by the censor board and taken off the OTT, once again has become the biggest political flashpoint in a state that is headed to elections next year, that is Punjab. The movie is based on the life of human rights activist Jaswant Singh Khalra and covers the turbulent period of terrorism and extrajudicial killings in the very state.
14: Main kaun hunna te tuhanu lag eh kehne wala bhi film dikhai jani chahiye nahi je oh film jehdi aa unhanne aap sare paati Diljit ne jadon eh kehta. ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹਟ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਟਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਫਿਲਮ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 1 ਮਿੰਟ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ ਦਲਜੀਤ ਦਸਾਂਝ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੀ ਪਿਕਚਰ
15: ਜਿਹੜਾ
14: ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਓ ਟੀ ਟੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਨਾ ਓਵਰ ਦਾ ਟੌਪ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਵਰ ਦਾ ਟੌਪ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦੇਣ, ਲੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾਈ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਪਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
13: On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here. But do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and the top stories through the day. Thank you for watching. This is Shreya Kundu.
15: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
16: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
17: Thug.com.

0: की जो घटना है उस पर सरकार कड़ा नजर रखा है, इंक्वायरी हो रही है। इस प्रकार काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यूपी सरकार इसका बराबर छानबीन करके दोषियों को सजा देगा।
1: रामलला का जो चोरी बनेगा अपने आप चोर बन जाएगा, जेल में पहुंच जाएगा, उसकी फांसी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जो निर्णय राम के लिए रामलला पर विश्वास है, इसलिए उनको सफलता मिली, देखे जेल में चले गए।
2: क्या कहते हैं महाराज जी, जो आरोपी हैं या जो जांच चल रही है, अब अंतरिम रिपोर्ट भी सर?
1: जो रामलला को नहीं जानते हैं वो तो बोलेंगे, हमेशा ही बोलेंगे। रामलला के यहाँ कोई कमी नहीं है, सब ठीक चल रहा है।
3: कब से चल रहा है? हो सकता है जो उजागर हुआ हो वो बहुत कम मात्रा पता पड़ी है, लेकिन पूरा, और लोग तो कह रहे हैं जमीन जब खरीदी गई थी उसमें बहुत अहित हुआ था। अब आरोप लगेंगे तो एक बार चोरी पकड़ी जाती है तो शक बहुत दूर तक जाता है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को इस तरह का बयान देना चाहिए। हालांकि बोलते बहुत कम है, लेकिन जब भी वापस देश में आएंगे उनको बोलना चाहिए। मैं तो इतना कह रहा हूँ कि जो SIT की जांच है इससे कुछ निकलेगा नहीं, लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अगर जांच होगी तो वह ऊपर तक नाम आएंगे। उसका जनता पर विश्वास दिलाकर खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि हम जांच को अंतिम छोर तक लेकर जाए।
4: एब्सोल्युटली वी आर प्रोटेक्टिंग लॉर्ड राम फ्रॉम द बीजेपी, द बीजेपी इज नाउ बाबर जनता पार्टी। The UCC debate the BJP is bringing up only to distract the country from the Ram Mandir loot. We will not let that happen. Let's debate UCC on its merits and we will support it.
5: The Congress has demanded the Supreme Court investigation into this.
4: Absolutely, all of us are discussing that, and Supreme Court has to come in with a fair probe for Ram Mandir loot.
6: In the meeting, everyone expressed grief over the incident of irregularities in counting of the donation of box offerings at the Sri Rama Janmabhoomi Mandir, and expressed confidence that the ongoing SIT and police action initiated at the request of Kirthakshetra Nyas will reach a decisive turn. It was expected of Kirthakshetra Nyas to ensure that no such incident happen in future which could hurt the reverence and the deep faith of all Ram Bhaktas towards the Ram Mandir.
7: जिस तरह से बीजेपी का चेहरा सामने आया, भगवान राम के अयोध्या मंदिर चढ़ावे का जो चोरी हुआ है उस पर जो बड़ा काला धब्बा लगा है, दाग लगा है, ये हर लोग जवाब मांग रहे हैं कि ये भगवान राम को राजनीति कर सत्ता में आ गए, भगवान के नाम को बेचा और उनके चढ़ावे का भी चोरी कर लिया।
8: अब पछताए होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। बात यह है कि ये पूरा जो भ्रष्टाचार हो रहा था, चंदा चोरी हो रहा था, किसके साम्राज्य में, किसके मैं कहती हूँ नेतृत्व में चल रहा था, क्यों उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों, क्या दो इस्तीफे मिलकर आपका काम हो जाता है, 5-6 लोगों को पकड़ कर आपका काम खत्म हो गया यहीं पे, और फिर ध्यान भटकाने का काम करेंगे, हम CEO अपॉइंट करेंगे। अरे CEO आपको तभी अपॉइंट कर लेना चाहिए था जब आपके मन में अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और सच्ची श्रद्धा और प्रेम भगवान श्री राम के लिए होता, और सही मायने में जो भगवान श्री राम के सही श्रद्धालु हैं उनको उसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए, ना कि जो भारतीय जनता पार्टी, VHP और RSS के श्रद्धालु हों।
9: Earlier in today, Suesha Savan spoke to veteran actor Anupam Kher, who has become the talk of the town because of his role in Sri Rama Bhoomi, the upcoming film based on Ayodhya's Ram Temple. The 71-year-old actor will be portraying Ashok Singhal, the former president of the Vishwa Hindu Parishad and a key figure in the Ram Mandir movement. The actor also spoke about the Chadhava Chori Rao and what has been underway. Listen in to all that he had to say.
10: So, as a devotee yourself, would you say that there should be better processes in place?
11: I will tell people that please be careful.
10: Okay.
11: Please get people who are honest. I will say that get people who are answerable, and I will say that let the faith not get shaken, because it's a very, very, very important place. I'll say that. My only issue is that people are making it out into some kind of a loot machi hai mandir mein, ab main loot macha di hai, loot mat, aise aise shabdon ka istemal ho raha hai. अरे मंदिरों में लूट मची थी जब मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा था, लूट मची थी तब जब मुगल राजाओं ने ब्राह्मणों को मार के उनके जनेयू को एक मन जनेयू को इकट्ठा करके तोला था। लूट मची थी जब यहां से बहुत सारे मुगल एम्परर आए थे और हर मंदिर की हर चीजें उठाकर ले गए थे। लूट मची थी तब जब विमेन वर रेप इन द टेम्पल प्रमाइसेस। दैट्स ए मच बिगर प्रॉब्लम। इफ वी ओवरकम दैट देन आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी माइनर थिंग एंड एन ह्यूमन एरर इन द नॉट एरर इट्स अ ह्यूमन ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स।
9: The old debate of how far can one push creative freedom has resurfaced again. How so? Well, the controversy surrounding Diljit Dosanjh's Tara Satluj has intensified further over the same question. Its Union Minister Ravneet Singh Bittu has now issued a direct challenge to the film's makers. Bittu has asked the makers to publicly present evidence, official records and judicial findings to support the film's claim of 25,000 missing or illegally cremated bodies in Punjab. He said filmmakers cannot invoke creative freedom to merely portray disputed figures as established historical facts. Satluj, a film blocked by the censor board and taken off the OTT, once again has become the biggest political flashpoint in a state that is headed to elections next year, that is Punjab. The movie is based on the life of human rights activist Jaswant Singh Kalra and covers a turbulent period of terrorism and extrajudicial killings in the very state.
12: Main kaun hunna
13: ta tonu lag
12: eh kehn wala bhi film dikhai jani chahiye nahi je oh film jehdi aa unna ne aap sare paati Diljit ne jadon eh kehta देखो ना ओदे विच ही मुश्क आउंदा है भी इहदे विच कोई गड़बड़ आ भी उन्हें कहा भी दो दिन तीन ये फिल्म रहूगी उदू बाद फिल्म हट जाएगी जे सरकारां ने हटाउणी हुंदी है सर फिल्म सरकार तो एक पहला नहीं चलन दे रही थी जिवें कह रहे हो एक मिनट ना चलन दिंदी Diljit Dosanjh ते उन्हें तो अपना पैसा बनाउणा सी उहदे करके उह लग्गिया होया सी जदों उहनां दा बन गया उहनां ने जदी पिक्चर मेरी मेरी बेनती जी गल आ जिहड़ा ओ टी टी आ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਨਾ ਓਵਰ ਦਾ ਟੋਪ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਵਰ ਦਾ ਟੋਪ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਟੋਪ ਆ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦੇਣ ਲੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾਈ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪਾ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ
9: On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here. But do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and the top stories through the day. Thank you for watching. This is Shreya Kundu.
14: India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
15: This is the sound of Lucy, staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
16: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
17: When your cat is acting weird-er, or your dog is being loud-er, your turtle moves slow-er.
18: Hello, Ted.
17: Your cat seems thirsty-er.
19: Whoa, slow down, buddy.
17: Or your puppy is acting clumsy-er. Day or night, if you don't know what's wrong, know where to go.
18: Veg ER for pets. This is Kate.
17: Veg. The better, kinder ER for pets.
20: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits.
21: Somebody save me.
20: To timeless favorites.
21: Life is like a song.
20: And new discoveries.
21: So much more.
20: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn. You and

0: Now, the Ram Mandir donation theft case has snowballed on two particular paths, and that's going on parallelly, let us tell you, politically speaking and probe-wise. Politically speaking, the opposition and the BJP are consistently trading sharp accusations at each other, while on the other hand, as the probe widens, the Temple Trust has begun the search for a new CEO, Chief Executive Officer, and as well as rolled out sweeping administrative and security reforms, while the Congress has stepped up its attack. Congress leader Sachin Pilot alleged irregularities even in the Ram Mandir land purchase earlier, urged Prime Minister Narendra Modi to address the nation with regards to this particular matter, questioned the credibility of the SIT probe and demanded that the investigation that's being done, that be monitored by a Supreme Court judge instead. RSS, on the other hand, has expressed deep anguish over the donation counting irregularities at the Ram Mandir, voiced confidence in the ongoing SIT probe, and urged the Ram Mandir Trust to ensure such incidents never recur while safeguarding the faith of millions of devotees. Meanwhile, the process to appoint a new CEO for the Ram Mandir Trust has officially begun. A three-member search committee held its first meeting yesterday, finalized the eligibility criteria and invited applications till July 18th. Now, shortlisted candidates will be interviewed before a CEO is appointed for an initial three-year term. And amid this, the temple security has also been significantly tightened. 13 new CCTV cameras have been installed, 27 additional SIS personnel deployed, police posted at key locations, and the entire donation counting process brought under continuous video surveillance. Also, at the same time, staff that will be handling the donations will also be wearing pocketless uniforms.
1: यह अपने में एक तरीके का कलंक है एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है व्यवस्था में सुधार होगा मुझे पूरा विश्वास है
2: राम मंदिर बनाने की भूमिका भी आरएसएस ने किया ये जो लोग आज हिमायती बन रहे हैं वो राम भक्तों पे गोली चला रहे थे कोई राम के अस्तित्व को नहीं स्वीकार रहे थे कोई राम सेतु को नहीं मान रहे थे तो ये देश का दुर्भाग्य है कि वैसे लोगों जिनका बोलने का कोई नैतिक आधार नहीं वो आज बोल रहे हैं
3: सबको पता है कि इनकी आस्थाएं कहाँ हैं और इन्होंने कभी एक अक्षर नहीं बोला जब सनातन को एचआईवी एड्स बोला जा रहा था डेंगू बोला जा रहा था तब इनके मुंह से एक अक्षर नहीं फूटा आज यकायक इनके मन में राम भक्ति जाग पड़ी है वैसे तो हम स्वागत करते हैं परंतु सब जानते हैं कि ये कैसे राम भक्त हैं
4: राम मंदिर की जो घटना है उस पर सरकार कड़ा नजर रखा है इंक्वायरी हो रही है इस प्रकार काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यूपी सरकार इसका बराबर छानबीन करके दोषियों को सजा दे
5: रामला का जो चोरी बनेगा अपने आप चोर बन जाएगा जेल में पहुंच जाएगा उसकी फांसी हो जाएगी मुख्यमंत्री जो निर्णय राम के लिए रामला पर विश्वास था इसलिए उनको सफलता मिली देखिए जेल में चले गए
6: क्या कहते हैं हमारा भी जो आरोपी है या जो जांच चल रही है अब अंतरिम रिपोर्ट भी तक
5: जो रामलला को नहीं जानते हैं वो तो बोलेंगे हमेशा ही बोलेंगे रामलला के यहाँ कोई कमी नहीं है सब ठीक चल रहा है
7: कब से चल रहा है हो सकता है जो उजागर हुआ हो वो बहुत कम मात्रा पता पड़ी है लेकिन पूरा और लोग तो कह रहे हैं जमीन जब खरीदी गई थी उसका बहुत अहित हुआ था अब आरोप लगेंगे तो एक बार चोरी पकड़ी जाती है तो शक बहुत दूर तक जाता है तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को इस तरह का बयान देना चाहिए हालांकि बोलते बहुत कम है लेकिन जब भी वापस देश में आएंगे उनको बोलना चाहिए मैं तो इतना कह रहा हूँ कि जो एसआईटी की जांच है इससे

0: Now, the Ram Mandir donation theft case has snowballed on two particular paths, and that's going on parallelly, let us tell you, politically speaking and probe-wise. Politically speaking, the opposition and the BJP are consistently trading sharp accusations at each other, while on the other hand, as the probe widens, the Temple Trust has begun the search for a new CEO, Chief Executive Officer, and as well as rolled out sweeping administrative and security reforms, while the Congress has stepped up its attack. Congress leader Sachin Pilot alleged irregularities even in the Ram Mandir land purchase earlier, urged Prime Minister Narendra Modi to address the nation with regards to this particular matter, questioned the credibility of the SIT probe and demanded that the investigation that's being done, that be monitored by a Supreme Court judge instead. RSS, on the other hand, has expressed deep anguish over the donation counting irregularities at the Ram Mandir, voiced confidence in the ongoing SIT probe, and urged the Ram Mandir Trust to ensure such incidents never recur while safeguarding the faith of millions of devotees. Meanwhile, the process to appoint a new CEO for the Ram Mandir Trust has officially begun. A three-member search committee held its first meeting yesterday, finalized the eligibility criteria and invited applications till July 18th. Now, shortlisted candidates will be interviewed before a CEO is appointed for an initial three-year term. And amid this, the temple security has also been significantly tightened. 13 new CCTV cameras have been installed, 27 additional SIS personnel deployed, police posted at key locations, and the entire donation counting process brought under continuous video surveillance. Also, at the same time, staff that will be handling the donations will also be wearing pocketless uniforms.
1: यह अपने में एक तरीके का कलंक है एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है व्यवस्था में सुधार होगा मुझे पूरा विश्वास है
2: राम मंदिर बनाने की भूमिका भी आरएसएस ने किया ये जो लोग आज हिमायती बन रहे हैं वो राम भक्तों पे गोली चला रहे थे कोई राम के अस्तित्व को नहीं स्वीकार रहे थे कोई राम सेतु को नहीं मान रहे थे तो ये देश का दुर्भाग्य है कि वैसे लोगों जिनका बोलने का कोई नैतिक आधार नहीं वो आज बोल रहे हैं
3: सबको पता है कि इनकी आस्थाएं कहाँ हैं और इन्होंने कभी एक अक्षर नहीं बोला जब सनातन को HIV एड्स बोला जा रहा था डेंगू बोला जा रहा था तब इनके मुंह से एक अक्षर नहीं फूटा आज यकायक इनके मन में राम भक्ति जाग पड़ी है वैसे तो हम स्वागत करते हैं परंतु सब जानते हैं कि ये कैसे राम भक्त हैं
4: राम मंदिर की जो घटना है उस पर सरकार कड़ा नजर रखा है इंक्वायरी हो रही है इस प्रकार काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यूपी सरकार इसका बराबर छानबीन करके दोषियों को सजा दे
5: रामलला का जो चोरी बनेगा अपने आप चोर बन जाएगा जेल में पहुंच जाएगा उसकी फांसी हो जाएगी मुख्यमंत्री जो निर्णय राउंड के लिए रामलला पर विश्वास है इसलिए उनको सफलता मिली देखे जेल में चले गए
6: क्या कहते हैं हमारा भी जो आरोपी है या जो जांच चल रही है अब अंतरिम रिपोर्ट भी
5: जो रामलला को नहीं जानते हैं वो तो बोलेंगे हमेशा ही बोलेंगे रामलला के यहाँ कोई कमी नहीं है सब ठीक चल रहा है
7: कब से चल रहा है हो सकता है जो उजागर हुआ हो वो बहुत कम मात्रा पता पड़ी है लेकिन पूरा और लोग तो कह रहे हैं जमीन जब खरीदी गई थी उसका बहुत अहितकर हुआ था अब आरोप लगेंगे तो एक बार चोरी पकड़ी जाती है तो शक बहुत दूर तक जाता है तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को इस तरह का बयान देना चाहिए हालांकि बोलते बहुत कम है लेकिन जब भी वापस देश में आएंगे उनको बोलना चाहिए मैं तो इतना कह रहा हूँ कि जो SIT की जांच है इससे कुछ निकलेगा नहीं लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अगर जांच होगी तो वह ऊपर तक नाम आएंगे उसका जनता पर विश्वास दिलाकर खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि हम जांच को अंतिम छोर तक लेकर जाए
8: Absolutely, we are protecting Lord Ram from the BJP. The BJP is now Babar Janata Party.
9: Sir, West Bengal government.
8: The UCC debate the BJP is bringing up only to distract the country from the Ram Mandir loot. We will not let that happen. Let's debate UCC on its merits and we will support it.
9: The Congress has demanded the Supreme Court investigation into this.
8: Absolutely, all of us are discussing that and Supreme Court has to come in with a fair probe for Ram Mandir loot.
10: In the meeting, Everyone expressed grief over the incident of irregularities in counting of the donation of box offerings at the Sri Rama Janmabhoomi Mandir and expressed confidence that the ongoing SIT and police action initiated at the request of Tirthakshetra Nyas will reach a decisive turn. It was expected of Tirthakshetra Nyas to ensure that no such incident happen in future which could hurt the reverence and the deep faith of all Ram Bhaktas towards the Ram Mandir.
11: जिस तरह से बीजेपी का चेहरा सामने आया, भगवान राम के अयोध्या मंदिर चढ़ावे का जो चोरी हुआ है उस पर जो बड़ा काला धब्बा लगा है, दाग लगा है, ये हर लोग जवाब मांग रहे हैं कि ये भगवान राम को राजनीति कर सत्ता में आ गए, भगवान के नाम को बेचा और उनके चढ़ावे का भी चोरी कर लिया।
12: अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बात यह है कि ये पूरा जो भ्रष्टाचार हो रहा था, चंदा चोरी हो रहा था, किसके साम्राज्य में, किसके मैं कहती हूँ नेतृत्व में चल रहा था, क्यों उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों क्या दो इस्तीफे मिलकर आपका काम हो जाता है, 5-6 लोगों को पकड़कर आपका काम खत्म हो गया यहीं पे, और फिर ध्यान भटकाने का काम करेंगे, हम सीईओ अपॉइंट करेंगे। अरे सीईओ आपको तभी अपॉइंट कर लेना चाहिए था जब आपके मन में अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और सच्ची श्रद्धा और प्रेम भगवान श्री राम के लिए होता, और सही मायने में जो भगवान श्री राम के सही श्रद्धालु हैं उनको उसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए, ना कि जो भारतीय जनता पार्टी, वीएचपी और आरएसएस के श्रद्धालु हों।
13: Earlier in today, Suesha Savan spoke to veteran actor Anupam Kher, who has become the talk of the town because of his role in Sri Ram Bhoomi, the upcoming film based on Ayodhya's Ram Temple. The 71-year-old actor will be portraying Ashok Singhal, the former president of the Vishwa Hindu Parishad and a key figure in the Ram Mandir movement. The actor also spoke about the Chadhava Chori Rao and what has been underway. Listen in to all that he had to say.
14: So as a devotee yourself, would you say that there should be better processes in place?
15: I will tell people that please be careful.
14: Okay.
15: Please get people who are honest. I will say that get people who are answerable, and I will say that let the faith not get shaken, because it's a very, very, very important place. I'll say that. My only issue is that people are making it out into some kind of a loot machi hai mandir mein. Ab main loot macha di hai, loot mat. Aise aise shabdon ka istemal ho raha hai. अरे मंदिरों में लूट मची थी जब मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा था, लूट मची थी तब जब मुगल राजाओं ने ब्राह्मणों को मार के उनके जनेयू को एक मन जनेयू को इकट्ठा करके तोला था, लूट मची थी जब यहां से बहुत सारे मुगल एम्परर आए थे और हर मंदिर की हर चीजें उठाकर ले गए थे, लूट मची थी तब जब विमेन वर रेप्ड इन द टेम्पल प्रमाइसेस. So that's a much bigger problem. If we overcome that, then I think this is a very, very minor thing and a human error. It's a human greed of few individuals.
13: The old debate of how far can one push creative freedom has resurfaced again. How so? Well, the controversy surrounding Diljit Dosanjh's Tara Satluj has intensified further over the same question. It's Union Minister Ravneet Singh Bittu who has now issued a direct challenge to the film's makers. Bittu has asked the makers to publicly present evidence, official records and judicial findings to support the film's claim of 25,000 missing or illegally cremated bodies in Punjab. He said filmmakers cannot invoke creative freedom to merely portray disputed figures as established historical facts. Satluj, a film blocked by the censor board and taken off the OTT, once again has become the biggest political flashpoint in a state that is headed to elections next year, that is Punjab. The movie is based on the life of human rights activist Jaswant Singh Khalra and covers the turbulent period of terrorism and extrajudicial killings in the very state.
16: ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ
17: ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ
16: ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪਾਤੀ, ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਹੂਗੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਟਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਫਿਲਮ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ ਦਲਜੀਤ ਦਸਾਂਝ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੀ ਪਿਕਚਰ ਲਾ ਕੇ
17: ਜਿਹੜਾ
16: ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਓ ਟੀ ਟੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਨਾ, ਓਵਰ ਦਾ ਟੋਪ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਵਰ ਦਾ ਟੋਪ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਟੋਪ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦੇਣ, ਲੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾਈ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
13: On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here. But do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and the top stories through the day. Thank you for watching. This is Shreya Kundu.
18: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
19: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So, you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news...
20: After multiple assassination attempts, they can't even get...
21: They're reliable.
22: Always when I need them.
19: ...to live sports action.
23: One-hand jam by LeBron on the break!
24: That's another three, Steph Curry!
19: And your favorite music.
25: Well, the dawn begins to crack.
19: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app, or ask your device to play TuneIn.

0: irregularities, even in the Ram Mandir land purchase earlier, urged Prime Minister Narendra Modi to address the nation with regards to this particular matter, questioned the credibility of the SIT probe and demanded that the investigation that's being done, that be monitored by a Supreme Court judge instead. RSS, on the other hand, has expressed deep anguish over the donation counting irregularities at the Ram Mandir, voiced confidence in the ongoing SIT probe, and urged the Ram Mandir Trust to ensure such incidents never recur while safeguarding the faith of millions of devotees. Meanwhile, the process to appoint a new CEO for the Ram Mandir Trust has officially begun. A three-member search committee held its first meeting yesterday, finalized the eligibility criteria and invited applications till July 18th. Now, shortlisted candidates will be interviewed before a CEO is appointed for an initial three-year term. And amid this, the temple security has also been significantly tightened. 13 new CCTV cameras have been installed, 27 additional SIS personnel deployed, police posted at key locations, and the entire donation counting process brought under continuous video surveillance. Also, at the same time, staff that will be handling the donations will also be wearing pocketless uniforms.
1: यह अपने में एक तरीके का कलंक है एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है व्यवस्था में सुधार होगा मुझे पूरा विश्वास है
2: राम मंदिर बनाने की भूमिका भी आरएसएस ने किया ये जो लोग आज हिमायती बन रहे हैं वो राम भक्तों पे गोली चला रहे थे कोई राम के अस्तित्व को नहीं स्वीकार रहे थे कोई राम सेतु को नहीं मान रहे थे तो ये देश का दुर्भाग्य है कि वैसे लोगों जिनका बोलने का कोई नैतिक आधार नहीं वो आज बोल रहे हैं
3: सबको पता है कि इनकी आस्थाएं कहाँ हैं और इन्होंने कभी एक अक्षर नहीं बोला जब सनातन को एचआईवी एड्स बोला जा रहा था डेंगू बोला जा रहा था तब इनके मुंह से एक अक्षर नहीं फूटा आज यकायक इनके मन में राम भक्ति जाग पड़ी है वैसे तो हम स्वागत करते हैं परंतु सब जानते हैं कि ये कैसे राम भक्त हैं
4: राम मंदिर की जो घटना है उस पर सरकार कड़ा नजर रखा है इंक्वायरी हो रही है इस प्रकार काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यूपी सरकार इसका बराबर छानबीन करके दोषियों को सजा देगा
5: रामला का जो चोरी बनेगा अपने आप चोर बन जाएगा जेल में पहुंच जाएगा उसकी फांसी हो जाएगी मुख्यमंत्री जो निर्णय राम के लिए रामला पर विश्वास है इसलिए उनको सफलता मिली देखिए जेल में चले गए
6: क्या कहते हैं महाराज जी जो आरोपी हैं या जो जांच चल रही है अब अंतरिम रिपोर्ट भी
5: जो रामला को नहीं जानते हैं वो तो बोलेंगे हमेशा ही बोलेंगे रामला के यहाँ कोई कमी नहीं है सब ठीक चल रहा है
7: कब से चल रहा है हो सकता है जो उजागर हुआ हो वो बहुत कम मात्रा पता पड़ी है लेकिन पूरा और लोग तो कह रहे हैं जमीन जब खरीदी गई थी उसका बहुत अहित हुआ था अब आरोप लगेंगे तो एक बार चोरी पकड़ी जाती है तो शक बहुत दूर तक जाता है तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को इस तरह का बयान देना चाहिए हालांकि बोलते बहुत कम है लेकिन जब भी वापस देश में आएंगे उनको बोलना चाहिए मैं तो इतना कह रहा हूँ कि जो एस आई टी की जांच है इससे कुछ निकलेगा नहीं लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अगर जांच होगी तो वह ऊपर तक नाम आएंगे उसका जनता पर विश्वास दिलाकर खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि हम जांच को अंतिम छोर तक लेकर जाएं
8: एब्सोल्युटली वी आर प्रोटेक्टिंग लॉर्ड राम From the BJP. The BJP is now Babar Janata Party.
9: Sir, West Bengal government.
8: The UCC debate, the BJP is bringing up only to distract the country from the Ram Mandir loot. We will not let that happen. Let's debate UCC on its merits and we will support it.
9: The Congress has demanded the Supreme Court investigation into this.
8: Absolutely. All of us are discussing that. And Supreme Court has to come in with a fair probe for Ram Mandir loot.
10: In the meeting, everyone expressed grief over the incident of irregularities in counting of the donation of box offerings at the Sri Rama Janmabhoomi Mandir and expressed confidence that the ongoing SIT and police action initiated at the request of Kirthakshetra Nyas will reach a decisive turn. It was expected of Kirthakshetra Nyas to ensure that no such incident happen in future

0: which could hurt the reverence and the deep faith of all Ram Bhaktas towards the Ram Mandir.
1: जिस तरह से बीजेपी का चेहरा सामने आया, भगवान राम के अयोध्या मंदिर चढ़ावे का जो चोरी हुआ है, उस पर जो बड़ा काला धब्बा लगा है, दाग लगा है, ये हर लोग जवाब मांग रहे हैं कि ये भगवान राम को राजनीति कर सत्ता में आ गए, भगवान के नाम को बेचा और उनके चढ़ावे का भी चोरी कर लिया।
2: अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बात यह है कि ये पूरा जो भ्रष्टाचार हो रहा था, चंदा चोरी हो रहा था, किसके साम्राज्य में, किसके मैं कहती हूँ नेतृत्व में चल रहा था, क्यों उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों क्या दो इस्तीफे मिलकर आपका काम हो जाता है, 5-6 लोगों को पकड़ कर आपका काम खत्म हो गया यहीं पे, और फिर ध्यान भटकाने का काम करेंगे, हम CEO अपॉइंट करेंगे। अरे CEO आपको तभी अपॉइंट कर लेना चाहिए था जब आपके मन में अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और सच्ची श्रद्धा और प्रेम भगवान श्री राम के लिए होता, और सही मायने में जो भगवान श्री राम के सही श्रद्धालु हैं उनको उसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए, ना कि जो भारतीय जनता पार्टी, VHP और RSS के श्रद्धालु हों।
3: Earlier in today's Suisha Savan spoke to veteran actor Anupam Kher, who has become the talk of the town because of his role in Shri Ram Bhoomi, the upcoming film based on Ayodhya's Ram Temple. The 71-year-old actor will be portraying Ashok Singhal, the former president of the Vishwa Hindu Parishad and a key figure in the Ram Mandir movement. The actor also spoke about the Chadhava Chori Rao and what has been underway. Listen in to all that he had to say.
4: So as a devotee yourself, would you say that there should be better processes in place?
5: I will tell people that please be careful.
4: Okay.
5: Please get people who are honest. I will say that get people who are answerable, and I will say that let the faith not get shaken, because it's a very, very, very important place. I'll say that. My only issue is that people are making it out into some kind of a loot machi hai mandir mein. Ab main loot macha di hai, loot mat. Aise aise shabdon ka istemal ho raha hai. अरे मंदिरों में लूट मची थी जब मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा था, लूट मची थी तब जब मुगल राजाओं ने ब्राह्मणों को मार के उनके जनेयू को, एक मन जनेयू को इकट्ठा करके तोला था, लूट मची थी जब यहां से बहुत सारे मुगल एम्परर्स आए थे और हर मंदिर की हर चीजें उठाकर ले गए थे, लूट मची थी तब जब विमेन वर रेप इन द टेम्पल प्रमाइसेस. So that's a much bigger problem. If we overcome that, then I think this is a very, very minor thing and a human error. It's a human greed of few individuals.
3: The old debate of how far can one push creative freedom has resurfaced again. How so? Well, the controversy surrounding Diljit Dosanjh's Tara Satluj has intensified further over the same question. Its Union Minister Ravneet Singh Bittu, who has now issued a direct challenge to the film's makers. Bittu has asked the makers to publicly present evidence, official records and judicial findings to support the film's claim of 25,000 missing or illegally cremated bodies in Punjab. He said filmmakers cannot invoke creative freedom to merely portray disputed figures as established historical facts. Satluj, a film blocked by the censor board and taken off the OTT, once again has become the biggest political flashpoint in a state that is headed to elections next year, that is Punjab. The movie is based on the life of human rights activist Jaswant Singh Khalra and covers the turbulent period of terrorism and extrajudicial killings in the very state.
6: ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ
7: ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ
6: ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪਾਤੀ, ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਹੂਗੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹਟ ਜਾਏਗੀ. ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਟਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਫਿਲਮ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ ਦਲਜੀਤ ਦਸਾਂਝ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੀ ਪਿਕਚਰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਓ ਟੀ ਟੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਨਾ, ਓਵਰ ਦਾ ਟੋਪ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਵਰ ਦਾ ਟੋਪ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਟੋਪ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦੇਣ, ਲੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾਈ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਪਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ.
7: On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here, but do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and the top stories through the day. Thank you for watching. This is Shreya Kundu.
8: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
9: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
10: Let me remind you that FIFA has been pulled up because of controversies in the past. They have influenced the game. Refereeing the 2024 Champions League final as well. He has the reputation of being a good referee. So to pull him out and say that it was his call, that he was being a bit biased towards Argentina, I don't know whether that's fair. Technology has existed. 2016 was when VAR introduced. Until today, there has been no single match that has gone without controversy of VAR.

0: Now, the Ram Mandir donation theft case has snowballed on two particular paths, and that's going on parallelly, let us tell you, politically speaking and probe-wise. Politically speaking, the opposition and the BJP are consistently trading sharp accusations at each other, while on the other hand, as the probe widens, the Temple Trust has begun the search for a new CEO, Chief Executive Officer, and as well as rolled out sweeping administrative and security reforms, while the Congress has stepped up its attack. Congress leader Sachin Pilot alleged irregularities even in the Ram Mandir land purchase earlier, urged Prime Minister Narendra Modi to address the nation with regards to this particular matter, questioned the credibility of the SIT probe and demanded that the investigation that's being done, that be monitored by a Supreme Court judge instead. RSS, on the other hand, has expressed deep anguish over the donation counting irregularities at the Ram Mandir, voiced confidence in the ongoing SIT probe, and urged the Ram Mandir Trust to ensure such incidents never recur while safeguarding the faith of millions of devotees. Meanwhile, the process to appoint a new CEO for the Ram Mandir Trust has officially begun. A three-member search committee held its first meeting yesterday, finalized the eligibility criteria and invited applications till July 18th. Now, shortlisted candidates will be interviewed before a CEO is appointed for an initial three-year term. And amid this, the temple security has also been significantly tightened. 13 new CCTV cameras have been installed, 27 additional SIS personnel deployed, police posted at key locations, and the entire donation counting process brought under continuous video surveillance. Also, at the same time, staff that will be handling the donations will also be wearing pocketless uniforms.
1: यह अपने में एक तरीके का कलंक है एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है व्यवस्था में सुधार होगा मुझे पूरा विश्वास है
2: राम मंदिर बनाने की भूमिका भी आरएसएस ने किया ये जो लोग आज हिमायती बन रहे हैं वो राम भक्तों पे गोली चला रहे थे कोई राम के अस्तित्व को नहीं स्वीकार रहे थे कोई राम सेतु को नहीं मान रहे थे तो ये देश का दुर्भाग्य है कि वैसे लोगों जिनका बोलने का कोई नैतिक आधार नहीं वो आज बोल रहे हैं
3: सबको पता है कि इनकी आस्थाएं कहाँ हैं और इन्होंने कभी एक अक्षर नहीं बोला जब सनातन को एचआईवी एड्स बोला जा रहा था डेंगू बोला जा रहा था तब इनके मुंह से एक अक्षर नहीं फूटा आज यकायक इनके मन में राम भक्ति जाग पड़ी है वैसे तो हम स्वागत करते हैं परंतु सब जानते हैं कि ये कैसे राम भक्त हैं
4: राम मंदिर की जो घटना है उस पर सरकार कड़ा नजर रखा है इंक्वायरी हो रही है इस प्रकार काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यूपी सरकार इसका बराबर छानबीन करके दोषियों को सजा देगा
5: रामलला का जो चोरी बनेगा अपने आप चोर बन जाएगा जेल में पहुंच जाएगा उसकी फांसी हो जाएगी मुख्यमंत्री जो निर्णय राउंड के लिए रामलला पर विश्वास है इसलिए उनको सफलता मिली देखिए जेल में चले गए
6: क्या कहते हैं महाराज जी जो आरोपी हैं या जो जांच चल रही है अब अंतरिम रिपोर्ट भी
5: जो रामलला को नहीं जानते हैं वो तो बोलेंगे हमेशा ही बोलेंगे रामलला के यहाँ कोई कमी नहीं है सब ठीक चल रहा है
7: कब से चल रहा है हो सकता है जो उजागर हुआ हो वो बहुत कम मात्रा पता पड़ी है लेकिन पूरा और लोग तो कह रहे हैं जमीन जब खरीदी गई थी उसका बहुत अहित हुआ था अब आरोप लगेंगे तो एक बार चोरी पकड़ी जाती है तो शक बहुत दूर तक जाता है तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को इस तरह का बयान देना चाहिए हालांकि बोलते बहुत कम है लेकिन जब भी वापस देश में आएंगे उनको बोलना चाहिए मैं तो इतना कह रहा हूँ कि जो एसआईटी की जांच है इससे कुछ निकलेगा नहीं लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अगर जांच होगी तो वह ऊपर तक नाम आएंगे उसका जनता पर विश्वास दिलाकर खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि हम जांच को अंतिम छोर तक लेकर जाएं
8: एब्सोल्युटली वी आर प्रोटेक्टिंग लॉर्ड राम From the BJP. The BJP is now Babar Janata Party.
9: Sir, West Bengal government...
8: The UCC debate the BJP is bringing up only to distract the country from the Ram Mandir loot. We will not let that happen. Let's debate UCC on its merits and we will support it.
9: The Congress has demanded the Supreme Court investigation into this.
8: Absolutely. All of us are discussing that. And Supreme Court has to come in with a fair probe for Ram Mandir loot.
10: In the meeting, Everyone expressed grief over the incident of irregularities in counting of the donation of box offerings at the Sri Rama Janmabhoomi Mandir and expressed confidence that the ongoing SIT and police action initiated at the request of Tirthakshetra Nyas will reach a decisive turn. It was expected of Tirthakshetra Nyas to ensure that no such incident happen in future which could hurt the reverence and the deep faith of all Ram Bhaktas towards the Ram Mandir.
11: जिस तरह से बीजेपी का चेहरा सामने आया भगवान राम के अयोध्या मंदिर चढ़ावे का जो चोरी हुआ है उस पर जो बड़ा काला धब्बा लगा है दाग लगा है ये हर लोग जवाब मांग रहे हैं कि ये भगवान राम को राजनीति कर सत्ता में आ गए भगवान के नाम को बेचा और उनके चढ़ावे का भी चोरी कर लिया
12: अब पछताए होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत बात यह है कि ये पूरा जो भ्रष्टाचार हो रहा था चंदा चोरी हो रहा था किसके साम्राज्य में किसके मैं कहती हूँ नेतृत्व में चल रहा था क्यों उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है क्यों क्या दो इस्तीफे मिलकर आपका काम हो जाता है पांच छह लोगों को पकड़ कर आपका काम खत्म हो गया यहीं पे और फिर ध्यान भटकाने का काम करेंगे हम सीईओ अपॉइंट करेंगे अरे सीईओ आपको तभी अपॉइंट कर लेना चाहिए था जब आपके मन में अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी और सच्ची श्रद्धा और प्रेम भगवान श्री राम के लिए होता और सही मायने में जो भगवान श्री राम के सही श्रद्धालु हैं उनको उसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए ना कि जो भारतीय जनता पार्टी वीएचपी और आरएसएस के श्रद्धालु हों
13: Earlier in today, Suesha Savan spoke to veteran actor Anupam Kher, who has become the talk of the town because of his role in Sri Ram Bhoomi, the upcoming film based on Ayodhya's Ram Temple. The 71-year-old actor will be portraying Ashok Singhal, the former president of the Vishwa Hindu Parishad and a key figure in the Ram Mandir movement. The actor also spoke about the Chadhava Chori Rao and what has been underway. Listen in to all that he had to say.
14: So, as a devotee yourself, would you say that there should be better processes in place?
15: I will tell people that please be careful.
14: Okay.
15: Please get people who are honest. I will say that get people who are answerable, and I will say that let the faith not get shaken, because it's a very very very important place. I'll say that. My only issue is that people are making it out into some kind of a loot machi hai mandir mein. Ab main loot macha di hai, loot mat. Aise aise shabdon ka istemal ho raha hai. अरे मंदिरों में लूट मची थी जब मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा था लूट मची थी तब जब मुगल राजाओं ने ब्राह्मणों को मार के उनके जनेयू को एक मन जनेयू को इकट्ठा करके तोला था लूट मची थी जब यहां से बहुत सारे मुगल एम्परर्स आए थे और हर मंदिर की हर चीजें उठाकर ले गए थे लूट मची थी तब जब विमेन वर रेप इन द टेम्पल प्रमाइसेस So that's a much bigger problem. If we overcome that, then I think this is a very, very minor thing and a human error. It's a human greed of few individuals.
13: The old debate of how far can one push creative freedom has resurfaced again. How so? Well, the controversy surrounding Diljit Dosanjh's Tara Satluj has intensified further over the same question. It's Union Minister Ravneet Singh Bittu who has now issued a direct challenge to the film's makers. Bittu has asked the makers to publicly present evidence, official records and judicial findings to support the film's claim of 25,000 missing or illegally cremated bodies in Punjab. He said, filmmakers cannot invoke creative freedom to merely portray disputed figures as established historical facts. Satluj, a film blocked by the censor board and taken off the OTT, once again has become the biggest political flashpoint in a state that is headed to elections next year, that is Punjab. The movie is based on the life of human rights activist Jaswant Singh Khalra and covers the turbulent period of terrorism and extrajudicial killings in the very state.
16: ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ
17: ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ
16: ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪਾਤੀ, ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਹੂਗੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਟਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਫਿਲਮ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ ਦਲਜੀਤ ਦਸਾਂਝ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੀ ਪਿਕਚਰ ਲਾ ਕੇ
17: ਜਿਹੜਾ
16: ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਓ ਟੀ ਟੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਨਾ, ਓਵਰ ਦਾ ਟੋਪ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਵਰ ਦਾ ਟੋਪ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਟੋਪ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦੇਣ, ਲੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾਈ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਪਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
13: On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here, but do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and the top stories through the day. Thank you for watching. This is Shreya Kundu.
18: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
19: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Lebatard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.

0: was appointed for an initial 3-year term. And amid this, the temple security has also been significantly tightened. 13 new CCTV cameras have been installed, 27 additional SIS personnel deployed, police posted at key locations, and the entire donation counting process brought under continuous video surveillance. Also, at the same time, staff that will be handling the donations will also be wearing pocketless uniforms.
1: यह अपने में एक तरीके का कलंक है एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है व्यवस्था में सुधार होगा मुझे पूरा विश्वास है
2: राम मंदिर बनाने की भूमिका भी आरएसएस ने किया ये जो लोग आज हिमायती बन रहे हैं वो राम भक्तों पे गोली चला रहे थे कोई राम के अस्तित्व को नहीं स्वीकार रहे थे कोई राम सेतु को नहीं मान रहे थे तो ये देश का दुर्भाग्य है कि वैसे लोगों जिनका बोलने का कोई नैतिक आधार नहीं वो आज बोल रहे हैं
3: सबको पता है कि इनकी आस्थाएं कहाँ हैं और इन्होंने कभी एक अक्षर नहीं बोला जब सनातन को HIV एड्स बोला जा रहा था डेंगू बोला जा रहा था तब इनके मुंह से एक अक्षर नहीं फूटा आज यकायक इनके मन में राम भक्ति जाग पड़ी है वैसे तो हम स्वागत करते हैं परंतु सब जानते हैं कि ये कैसे राम भक्त हैं
4: राम मंदिर की जो घटना है उस पर सरकार कड़ा नजर रखा है इंक्वायरी हो रही है इस प्रकार काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यूपी सरकार इसका बराबर छानबीन करके दोषियों को सजा देगा
5: रामलला के यहाँ जो चोरी बनेगा अपने आप चोर बन जाएगा और जेल में पहुंच जाएगा उसकी फांसी हो जाएगी मुख्यमंत्री जो निर्णय राम के लिए रामलला पर विश्वास था इसलिए उनको सफलता मिली देखिए जेल में चले गए
6: क्या कहते हैं महाराज जी जो आरोपी हैं या जो जांच चल रही है अब अंतरिम रिपोर्ट भी सर
5: जो रामलला को नहीं जानते हैं वो तो बोलेंगे हमेशा ही बोलेंगे रामलला के यहाँ कोई कमी नहीं है सब ठीक चल रहा है
7: कब से चल रहा है हो सकता है जो उजागर हुआ हो वो बहुत कम मात्रा पता पड़ी है लेकिन पूरा और लोग तो कह रहे हैं जमीन जब खरीदी गई थी उसका बहुत अहित हुआ था अब आरोप लगेंगे तो एक बार चोरी पकड़ी जाती है तो शक बहुत दूर तक जाता है तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को इस तरह का बयान देना चाहिए हालांकि बोलते बहुत कम है लेकिन जब भी वापस देश में आएंगे उनको बोलना चाहिए मैं तो इतना कह रहा हूँ कि जो SIT की जांच है इससे कुछ निकलेगा नहीं लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अगर जांच होगी तो वह ऊपर तक नाम आएंगे उसका जनता पर विश्वास दिलाकर खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि हम जांच को अंतिम छोर तक लेकर जाए
8: एब्सोल्युटली वी आर प्रोटेक्टिंग लॉर्ड राम फ्रॉम द बीजेपी द बीजेपी इज नाउ बाबर जनता पार्टी The UCC debate the BJP is bringing up only to distract the country from the Ram Mandir loot. We will not let that happen. Let's debate UCC on its merits and we will support it.
9: The Congress has demanded the Supreme Court investigation into this.
8: Absolutely, all of us are discussing that and Supreme Court has to come in with a fair probe for Ram Mandir loot.
10: In the meeting, everyone expressed grief over the incident of irregularities in counting of the donation of box offerings at the Sri Rama Janmabhoomi Mandir and expressed confidence that the ongoing SIT and police action initiated at the request of Kirthakshetra Nyas will reach a decisive turn. It was expected of Kirthakshetra Nyas to ensure that no such incident happen in future which could hurt the reverence and the deep faith of all Ram Bhaktas towards the Ram Mandir.
11: जिस तरह से बीजेपी का चेहरा सामने आया भगवान राम के अयोध्या मंदिर चढ़ावे का जो चोरी हुआ है उस पर जो बड़ा काला धब्बा लगा है दाग लगा है ये हर लोग जवाब मांग रहे हैं कि ये भगवान राम को राजनीति कर सत्ता में आ गए भगवान के नाम को बेचा और उनके चढ़ावे का भी चोरी कर लिया
12: अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत बात यह है कि ये पूरा जो भ्रष्टाचार हो रहा था, चंदा चोरी हो रहा था, किसके साम्राज्य में, किसके मैं कहती हूँ नेतृत्व में चल रहा था, क्यों उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों क्या दो इस्तीफे मिलकर

0: Now, the Ram Mandir donation theft case has snowballed on two particular paths, and that's going on parallelly, let us tell you, politically speaking and probe-wise. Politically speaking, the opposition and the BJP are consistently trading sharp accusations at each other, while on the other hand, as the probe widens, the Temple Trust has begun the search for a new CEO, Chief Executive Officer, and as well as rolled out sweeping administrative and security reforms, while the Congress has stepped up its attack. Congress leader Sachin Pilot alleged irregularities even in the Ram Mandir land purchase earlier, urged Prime Minister Narendra Modi to address the nation with regards to this particular matter, questioned the credibility of the SIT probe and demanded that the investigation that's being done, that be monitored by a Supreme Court judge instead. RSS, on the other hand, has expressed deep anguish over the donation counting irregularities at the Ram Mandir, voiced confidence in the ongoing SIT probe, and urged the Ram Mandir Trust to ensure such incidents never recur while safeguarding the faith of millions of devotees. Meanwhile, the process to appoint a new CEO for the Ram Mandir Trust has officially begun. A three-member search committee held its first meeting yesterday, finalized the eligibility criteria and invited applications till July 18th. Now, shortlisted candidates will be interviewed before a CEO is appointed for an initial three-year term. And amid this, the temple security has also been significantly tightened. 13 new CCTV cameras have been installed, 27 additional SIS personnel deployed, police posted at key locations, and the entire donation counting process brought under continuous video surveillance. Also, at the same time, staff that will be handling the donations will also be wearing pocketless uniforms.
1: यह अपने में एक तरीके का कलंक है एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है व्यवस्था में सुधार होगा मुझे पूरा विश्वास है
2: राम मंदिर बनाने की भूमिका भी आरएसएस ने किया ये जो लोग आज हिमायती बन रहे हैं वो राम भक्तों पे गोली चला रहे थे कोई राम के अस्तित्व को नहीं स्वीकार रहे थे कोई राम सेतु को नहीं मान रहे थे तो ये देश का दुर्भाग्य है कि वैसे लोगों जिनका बोलने का कोई नैतिक आधार नहीं वो आज बोल रहे हैं
3: सबको पता है कि इनकी आस्थाएं कहाँ हैं और इन्होंने कभी एक अक्षर नहीं बोला जब सनातन को एचआईवी एड्स बोला जा रहा था डेंगू बोला जा रहा था तब इनके मुंह से एक अक्षर नहीं फूटा आज यकायक इनके मन में राम भक्ति जाग पड़ी है वैसे तो हम स्वागत करते हैं परंतु सब जानते हैं कि ये कैसे राम भक्त हैं
4: राम मंदिर की जो घटना है उस पर सरकार कड़ा नजर रखा है इंक्वायरी हो रही है इस प्रकार काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यूपी सरकार इसका बराबर छानबीन करके दोषियों को सजा देगा
5: रामलला का जो चोरी बनेगा अपने आप चोर बन जाएगा और जेल में पहुंच जाएगा उसकी फांसी हो जाएगी मुख्यमंत्री जो निर्णय राम के लिए रामलला पर विश्वास था इसलिए उनको सफलता मिली देखिए जेल में चले गए
6: क्या कहते हैं महाराज जी जो आरोपी हैं या जो जांच चल रही है अब अंतरिम रिपोर्ट भी तक
5: जो रामलला को नहीं जानते हैं वो तो बोलेंगे हमेशा ही बोलेंगे रामलला के यहाँ कोई कमी नहीं है सब ठीक चल रहा है
7: कब से चल रहा है हो सकता है जो उजागर हुआ हो वो बहुत कम मात्रा पता पड़ी है लेकिन पूरा और लोग तो कह रहे हैं जमीन जब खरीदी गई थी उसमें बहुत अहितपूर्ण हुआ था अब आरोप लगेंगे तो एक बार चोरी पकड़ी जाती है तो शक बहुत दूर तक जाता है तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को इस तरह का बयान देना चाहिए हालांकि बोलते बहुत कम है लेकिन जब भी वापस देश में आएंगे उनको बोलना चाहिए मैं तो इतना कह रहा हूँ कि जो एसआईटी की जांच है इससे कुछ निकलेगा नहीं लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अगर जांच होगी तो वह ऊपर तक नाम आएंगे उसका जनता पर विश्वास दिलाकर खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि हम जांच को अंतिम छोर तक लेकर जाए
8: एब्सोल्युटली वी आर प्रोटेक्टिंग लॉर्ड राम From the BJP. The BJP is now Babar Janata Party.
9: Sir, West Bengal government.
8: The UCC debate the BJP is bringing up only to distract the country from the Ram Mandir loot. We will not let that happen. Let's debate UCC on its merits and we will support it.
9: The Congress has demanded the Supreme Court investigation into this.
8: Absolutely. All of us are discussing that and Supreme Court has to come in with a fair probe for Ram Mandir loot.
10: In the meeting, Everyone expressed grief over the incident of irregularities in counting of the donation of box offerings at the Sri Rama Janmabhoomi Mandir and expressed confidence that the ongoing SIT and police action initiated at the request of Tirthakshetra Nyas will reach a decisive turn. It was expected of Tirthakshetra Nyas to ensure that no such incident happen in future which could hurt the reverence and the deep faith of all Ram Bhaktas towards the Ram Mandir.
11: जिस तरह से बीजेपी का चेहरा सामने आया, भगवान राम के अयोध्या मंदिर चढ़ावे का जो चोरी हुआ है उस पर जो बड़ा काला धब्बा लगा है, दाग लगा है, ये हर लोग जवाब मांग रहे हैं कि ये भगवान राम को राजनीति कर सत्ता में आ गए, भगवान के नाम को बेचा और उनके चढ़ावे का भी चोरी कर लिया।
12: अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बात यह है कि ये पूरा जो भ्रष्टाचार हो रहा था, चंदा चोरी हो रहा था, किसके साम्राज्य में, किसके मैं कहती हूँ नेतृत्व में चल रहा था, क्यों उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों क्या दो इस्तीफे मिलकर आपका काम हो जाता है, 5-6 लोगों को पकड़कर आपका काम खत्म हो गया यहीं पे, और फिर ध्यान भटकाने का काम करेंगे, हम सीईओ अपॉइंट करेंगे। अरे सीईओ आपको तभी अपॉइंट कर लेना चाहिए था जब आपके मन में अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और सच्ची श्रद्धा और प्रेम भगवान श्री राम के लिए होता, और सही मायने में जो भगवान श्री राम के सही श्रद्धालु हैं उनको उसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए, ना कि जो भारतीय जनता पार्टी, वीएचपी और आरएसएस के श्रद्धालु हों।
13: Earlier in today, Suesha Savant spoke to veteran actor Anupam Kher, who has become the talk of the town because of his role in Sri Ramabhoomi, the upcoming film based on Ayodhya's Ram Temple. The 71-year-old actor will be portraying Ashok Singhal, the former president of the Vishwa Hindu Parishad and a key figure in the Ram Mandir movement. The actor also spoke about the Chadhava Chori Rao and what has been underway. Listen in to all that he had to say.
14: In the sort of issues that are now being reported when it comes to accountability and transparency in the manner that temples are managed and run, what do you think can be adopted in terms of reforms to help with temple management?
15: So, there are a lot of people saying that I said, agar jo ghar mein hota hai, chor agar koi ghus aata hai, to some smart Alex are saying, अरे चोर में अगर घर वाले ही चोरी कर ले तो वो भी चोर है। इसका मतलब घर वाले चोर हैं। जो सदस्य घर वालों में, जिन्होंने घर में चोरी की है, वो भी चोर ही हैं। चोर चोरी है। और ये घपले तो कहीं भी हो सकते हैं, मेरा मतलब किसी भी चीज पे हो सकते हैं ना। जो फ्रॉड्स होते हैं, ये फ्रॉड है, इसको तो कोई नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। पर ऐसा तो नहीं है कि हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बहुत सारी चीजें होती हैं, आई एम श्योर, मंदिरों में होती है, गिरजे में होती है, मस्जिदों में होती है, किसी भी रिलीजियस प्लेसेस में होती है। बिकॉज जिसके मन में लालच है, उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बट ये बोलना कि आप लालची हैं और हिंदू हैं और आपने अपने ही रामलला के मंदिर में चोरी की, नहीं, आप लालची हैं और चोर हैं, मेरा सिर्फ यही पॉइंट है। उसको और दूसरा नमक मिर्च लगा के कि ये आई हैव नथिंग टू डू विद somebody पुटिंग somebody इन बैक फुट। आई एम श्योर द गवर्नमेंट्स कैन फाइट देयर ओन बैटल्स ब्यूटिफुली। आई फील दिस इज माई ट्रूथ एंड आई वुड लाइक टू स्टिक टू इट इवन इफ आई वॉज नॉट डूइंग श्री राम भूमि एज ए फिल्म।
14: So, as a devotee yourself, would you say that there should be better processes in place?
15: I will tell people that please be careful.
14: Okay.
15: Please get people who are honest. I will say that get people who are answerable, and I will say that let the faith not get shaken, because it's a very very very important place. I'll say that. My only issue is that people are making it out into some kind of a loot machi hai mandir mein, ab main loot macha di hai, loot mat, aise aise shabdon ka istemal ho raha hai, अरे मंदिरों में लूट मची थी जब मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा था, लूट मची थी तब जब मुगल राजाओं ने ब्राह्मणों को मार के उनके जनेयू को एक मन जनेयू को इकट्ठा करके तोला था, लूट मची थी जब यहां से बहुत सारे मुगल एम्परर आए थे और हर मंदिर की हर चीजें उठाकर ले गए थे, लूट मची थी तब जब विमेन वर रेप इन द टेम्पल प्रमाइसेस. That's a much bigger problem. If we overcome that, then I think this is a very, very minor thing and a human error. And not error, it's a human greed of few individuals.
0: The old debate of how far can one push creative freedom has resurfaced again. How so? Well, the controversy surrounding Diljit Dosanjh's Tara Satluj has intensified further over the same question. Its Union Minister Ravneet Singh Bittu has now issued a direct challenge to the film's makers. Bittu has asked the makers to publicly present evidence, official records and judicial findings to support the film's claim of 25,000 missing or illegally cremated bodies in Punjab. He said, filmmakers cannot invoke creative freedom to merely portray disputed figures as established historical facts. Satluj, a film blocked by the censor board and taken off the OTT, once again has become the biggest political flashpoint in a state that is headed to elections next year, that is Punjab. The movie is based on the life of human rights activist Jaswant Singh Kalra and covers a turbulent period of terrorism and extrajudicial killings in the very state.
16: ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ
17: ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ
16: ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪਾਤੀ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਹੂਗੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹਟ ਜਾਏਗੀ. ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਟਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਫਿਲਮ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੀ ਪਿਕਚਰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਓ ਟੀ ਟੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਨਾ, ਓਵਰ ਦਾ ਟੋਪ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਵਰ ਦਾ ਟੋਪ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਟੋਪ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦੇਣ, ਲੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾਈ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ.
0: On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here, but do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and the top stories through the day. Thank you for watching. This is Riya Kundu.
18: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
19: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go, so you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
18: India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
0: Imagine going to a vacation and getting onto a joyride, only one that ends up in a complete tragedy. We're speaking of the Vietnamese boat tragedy that took place yesterday, where at least 15 Indian tourists have died in a tragic incident as a boat capsized off Vietnam's southern island of Phu Quoc. In the latest development, Vietnamese police have now detained the captain of the boat, Nguyen Hong Hai, 57. He's under investigation for alleged violation of waterway transport safety regulations, and a criminal case probe has been launched against him. Now, remember, the vessel was carrying as many as 36 people in total, including 32 Indian tourists, three crew members and one attendant. The boat was travelling from Hon Mae Root Island to Phu Quoc's An Thoi port when it overturned right about 400 metres into the sea. Now, as per the report, sea conditions were already rough, the temperatures were not great, with large waves in the area at the same time. India's embassy in Vietnam has said that it's monitoring the incident closely and has established emergency response centers across in Ho Chi Minh City and Hanoi to assist all the affected families. 16 survivors of Saturday's speedboat accident have been discharged from the hospital and are returning to India, while one remains in critical condition even now in a Vietnamese hospital. The bodies of the victims are also being flown to India with all coordinated efforts in place.
17: My heartfelt condolence to the bereaved families, and I pray for speedy recovery of the injured and the strength be given to the families of the dead. As soon as we came to know, our National Working President Nara Lokesh Garu has immediately reacted to the incident, and he expressed a deep heartfelt condolence and immediately has spoken to the external ministry.
20: From Andhra Pradesh, we have three persons, we collapsed three persons, and one person is in ICU. Close to about 33 people were traveling from Andhra Pradesh. And my minister, Sri Nara Lokesh Garu, immediately responded and spoken to the Ministry of External Affairs. And from there, they have to have spoken to the embassy in India, and they also spoken to the Vietnam government. Very spontaneously, the government responded, and they have sent the rescue teams to the spot. And they also, made sure that the Indian community who were there in the incident were safeguarded and taken proper care.
21: The Ministry of External Affairs can very politely, respectfully suggest to Vietnam to improve its, mechanisms for weather safety, information, communication, regulation of boats, whatever it be, in as polite a way as we can, because that's good for Vietnam. In fact, they themselves would be setting up commission of inquiry to see why it happens, because such instances will spoil the future of tourism in Vietnam.
0: A tragic accident in Vietnam has claimed the lives of 15 Indian tourists. A speedboat carrying a group of holidaymakers capsized off the popular island of Phu Quoc on Saturday. The vessel was carrying as many as 32 Indian tourists when it overturned in the rough seas. Rescue teams managed to save as many as 21 others. But the loss of the 15 lives has left families back home in deep shock and grief. Take a look at this news report.

0: Security has also been significantly tightened. 13 new CCTV cameras have been installed, 27 additional SIS personnel deployed, police posted at key locations, and the entire donation counting process brought under continuous video surveillance. Also, at the same time, staff that will be handling the donations will also be wearing pocketless uniforms.
1: यह अपने में एक तरीके का कलंक है एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है व्यवस्था में सुधार होगा मुझे पूरा विश्वास है
2: राम मंदिर बनाने की भूमिका भी आरएसएस ने किया ये जो लोग आज हिमायती बन रहे हैं वो राम भक्तों पे गोली चला रहे थे कोई राम के अस्तित्व को नहीं स्वीकार रहे थे कोई राम सेतु को नहीं मान रहे थे तो ये देश का दुर्भाग्य है कि वैसे लोगों जिनका बोलने का कोई नैतिक आधार नहीं वो आज बोल रहे हैं
3: सबको पता है कि इनकी आस्थाएं कहाँ हैं और इन्होंने कभी एक अक्षर नहीं बोला जब सनातन को HIV एड्स बोला जा रहा था डेंगू बोला जा रहा था तब इनके मुंह से एक अक्षर नहीं फूटा आज यकायक इनके मन में राम भक्ति जाग पड़ी है वैसे तो हम स्वागत करते हैं परंतु सब जानते हैं कि ये कैसे राम भक्त हैं
4: राम मंदिर की जो घटना है उस पर सरकार कड़ा नजर रखा है इंक्वायरी हो रही है इस प्रकार काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यूपी सरकार इसका बराबर छानबीन करके दोषियों को सजा देगा
5: रामलला का जो चोरी बनेगा अपने आप चोर बन जाएगा जेल में पहुंच जाएगा उसकी फांसी हो जाएगी मुख्यमंत्री जो निर्णय राम के लिए रामलला पर विश्वास है इसलिए उनको सफलता मिली देखिए जेल में चले गए
6: क्या कहते हैं हमारा भी जो आरोपी है या जो जांच चल रही है अब अंतरिम रिपोर्ट भी
5: जो रामलला को नहीं जानते हैं वो तो बोलेंगे हमेशा ही बोलेंगे रामलला के यहाँ कोई कमी नहीं है सब ठीक चल रहा है
7: कब से चल रहा है हो सकता है जो उजागर हुआ हो वो बहुत कम मात्रा पता पड़ी है लेकिन पूरा और लोग तो कह रहे हैं जमीन जब खरीदी गई थी उसका बहुत अहितकर हुआ था अब आरोप लगेंगे तो एक बार चोरी पकड़ी जाती है तो शक बहुत दूर तक जाता है तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को इस तरह का बयान देना चाहिए हालांकि बोलते बहुत कम है लेकिन जब भी वापस देश में आएंगे उनको बोलना चाहिए मैं तो इतना कह रहा हूँ कि जो SIT की जांच है इससे कुछ निकलेगा नहीं लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अगर जांच होगी तो वह ऊपर तक नाम आएंगे उसका जनता पर विश्वास दिलाकर खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि हम जांच को अंतिम छोर तक लेकर जाए
8: Absolutely, we are protecting Lord Ram from the BJP. The BJP is now Babar Janata Party.
9: Sir, West Bengal government.
8: The UCC debate the BJP is bringing up only to distract the country from the Ram Mandir loot. We will not let that happen. Let's debate UCC on its merits and we will support it.
9: The Congress has demanded the Supreme Court investigation into this.
8: Absolutely, all of us are discussing that and Supreme Court has to come in with a fair probe for Ram Mandir loot.
10: In the meeting, everyone expressed grief over the incident of irregularities in counting of the donation of box offerings at the Sri Rama Janmabhoomi Mandir and expressed confidence that the ongoing SIT and police action initiated at the request of Tirthakshetra Nyas will reach a decisive turn. It was expected of Tirthakshetra Nyas to ensure that no such incident happen in future which could hurt the reverence and the deep faith of all Ram Bhaktas towards the Ram Mandir.
11: जिस तरह से बीजेपी का चेहरा सामने आया भगवान राम के अयोध्या मंदिर चढ़ावे का जो चोरी हुआ है उस पर जो बड़ा काला धब्बा लगा है दाग लगा है ये हर लोग जवाब मांग रहे हैं कि ये भगवान राम को राजनीति कर सत्ता में आ गए भगवान के नाम को बेचा और उनके चढ़ावे का भी चोरी कर लिया
12: अब पछताए होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत बात यह है कि ये पूरा जो भ्रष्टाचार हो रहा था, चंदा चोरी हो रहा था, किसके साम्राज्य में, किसके मैं कहती हूँ नेतृत्व में चल रहा था, क्यों उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों क्या दो इस्तीफे मिलकर आपका काम हो जाता है, 5-6 लोगों को पकड़कर आपका काम खत्म हो गया यहीं पे, और फिर ध्यान

0: Now, the Ram Mandir donation theft case has snowballed on two particular paths, and that's going on parallelly, let us tell you, politically speaking and probe-wise. Politically speaking, the opposition and the BJP are consistently trading sharp accusations at each other, while on the other hand, as the probe widens, the Temple Trust has begun the search for a new CEO, Chief Executive Officer, and as well as rolled out sweeping administrative and security reforms, while the Congress has stepped up its attack. Congress leader Sachin Pilot alleged irregularities even in the Ram Mandir land purchase earlier, urged Prime Minister Narendra Modi to address the nation with regards to this particular matter, questioned the credibility of the SIT probe and demanded that the investigation that's being done, that be monitored by a Supreme Court judge instead. RSS, on the other hand, has expressed deep anguish over the donation counting irregularities at the Ram Mandir, voiced confidence in the ongoing SIT probe, and urged the Ram Mandir Trust to ensure such incidents never recur while safeguarding the faith of millions of devotees. Meanwhile, the process to appoint a new CEO for the Ram Mandir Trust has officially begun. A three-member search committee held its first meeting yesterday, finalized the eligibility criteria and invited applications till July 18th. Now, shortlisted candidates will be interviewed before a CEO is appointed for an initial three-year term. And amid this, the temple security has also been significantly tightened. 13 new CCTV cameras have been installed, 27 additional SIS personnel deployed, police posted at key locations, and the entire donation counting process brought under continuous video surveillance. Also, at the same time, staff that will be handling the donations will also be wearing pocketless uniforms.
1: यह अपने में एक तरीके का कलंक है एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है व्यवस्था में सुधार होगा मुझे पूरा विश्वास है
2: राम मंदिर बनाने की भूमिका भी आरएसएस ने किया ये जो लोग आज हिमायती बन रहे हैं वो राम भक्तों पे गोली चला रहे थे कोई राम के अस्तित्व को नहीं स्वीकार रहे थे कोई राम सेतु को नहीं मान रहे थे तो ये देश का दुर्भाग्य है कि वैसे लोगों जिनका बोलने का कोई नैतिक आधार नहीं वो आज बोल रहे हैं
3: सबको पता है कि इनकी आस्थाएं कहाँ हैं और इन्होंने कभी एक अक्षर नहीं बोला जब सनातन को एचआईवी एड्स बोला जा रहा था डेंगू बोला जा रहा था तब इनके मुंह से एक अक्षर नहीं फूटा आज यकायक इनके मन में राम भक्ति जाग पड़ी है वैसे तो हम स्वागत करते हैं परंतु सब जानते हैं कि ये कैसे राम भक्त हैं
4: राम मंदिर की जो घटना है उस पर सरकार कड़ा नजर रखा है इंक्वायरी हो रही है इस प्रकार काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यूपी सरकार इसका बराबर छानबीन करके दोषियों को सजा देगा
5: रामला का जो चोरी बनेगा अपने आप चोर बन जाएगा जेल में पहुंच जाएगा उसकी फांसी हो जाएगी मुख्यमंत्री जो निर्णय राम के लिए रामला पर विश्वास है इसलिए उनको सफलता मिली देखिए जेल में चले गए
6: क्या चाहते हैं हमारा भी जो आरोपी है या जो जांच चल रही है अब अंतरिम रिपोर्ट भी सर
5: जो रामला को नहीं जानते हैं वो तो बोलेंगे हमेशा ही बोलेंगे रामला के यहाँ कोई कमी नहीं है सब ठीक चल रहा है
7: कब से चल रहा है हो सकता है जो उजागर हुआ हो वो बहुत कम मात्रा पता पड़ी है लेकिन पूरा और लोग तो कह रहे हैं जमीन जब खरीदी गई थी उसका बहुत अहित हुआ था अब आरोप लगेंगे तो एक बार चोरी पकड़ी जाती है तो शक बहुत दूर तक जाता है तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को इस तरह का बयान देना चाहिए हालांकि बोलते बहुत कम है लेकिन जब भी वापस देश में आएंगे उनको बोलना चाहिए मैं तो इतना कह रहा हूँ कि जो एस आई टी की जाँच है इससे कुछ निकलेगा नहीं लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अगर जांच होगी तो वह ऊपर तक नाम आएंगे उसका जनता पर विश्वास दिलाकर खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि हम जांच को अंतिम छोर तक लेकर जाए
8: एब्सोल्युटली वी आर प्रोटेक्टिंग लॉर्ड राम फ्रॉम द बीजेपी इज नाउ बाबर जनता पार्टी The UCC debate, the BJP is bringing up only to distract the country from the Ram Mandir loot. We will not let that happen. Let's debate UCC on its merits and we will support it.
9: The Congress has demanded the Supreme Court investigation into this.
8: Absolutely, all of us are discussing that and Supreme Court has to come in with a fair probe for Ram Mandir loot.
10: In the meeting, Everyone expressed grief over the incident of irregularities in counting of the donation of box offerings at the Sri Rama Janmabhoomi Mandir and expressed confidence that the ongoing SIT and police action initiated at the request of Kirthakshetra Nyas will reach a decisive turn. It was expected of Kirthakshetra Nyas to ensure that no such incident happen in future which could hurt the reverence and the deep faith of all Ram Bhaktas towards the Ram Mandir.
11: जिस तरह से बीजेपी का चेहरा सामने आया, भगवान राम के अयोध्या मंदिर चढ़ावे का जो चोरी हुआ है उस पर जो बड़ा काला धब्बा लगा है, दाग लगा है, ये हर लोग जवाब मांग रहे हैं कि ये भगवान राम को राजनीति कर सत्ता में आ गए, भगवान के नाम को बेचा और उनके चढ़ावे का भी चोरी कर लिया।
12: अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बात यह है कि ये पूरा जो भ्रष्टाचार हो रहा था, चंदा चोरी हो रहा था, किसके साम्राज्य में, किसके मैं कहती हूँ नेतृत्व में चल रहा था, क्यों उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों क्या दो इस्तीफे मिलकर आपका काम हो जाता है, 5-6 लोगों को पकड़कर आपका काम खत्म हो गया यहीं पे, और फिर ध्यान भटकाने का काम करेंगे, हम सीईओ अपॉइंट करेंगे। अरे सीईओ आपको तभी अपॉइंट कर लेना चाहिए था जब आपके मन में अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और सच्ची श्रद्धा और प्रेम भगवान श्री राम के लिए होता, और सही मायने में जो भगवान श्री राम के सही श्रद्धालु हैं उनको उसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए, ना कि जो भारतीय जनता पार्टी, वीएचपी और आरएसएस के श्रद्धालु हों।
13: Earlier in India Today, Suesha Savan spoke to veteran actor Anupam Kher, who has become the talk of the town because of his role in Sri Ramabhoomi, the upcoming film based on Ayodhya's Ram Temple. The 71-year-old actor will be portraying Ashok Singhal, the former president of the Vishwa Hindu Parishad and a key figure in the Ram Mandir movement. The actor also spoke about the Chadhava Chori Rao and what has been underway. Listen in to all that he had to say.
14: So as a devotee yourself, would you say that there should be better processes in
15: place?
14: I will
15: tell people that please be careful.
14: Okay.
15: Please get people who are honest. I will say that get people who are answerable, and I will say that let the faith not get shaken, because it's a very, very, very important place. I'll say that. My only issue is that people are making it out into some kind of a loot machi hai mandir mein, ab main loot macha di hai, loot mat, aise shabdon ka istemal ho raha hai. अरे मंदिरों में लूट मची थी जब मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा था, लूट मची थी तब जब मुगल राजाओं ने ब्राह्मणों को मार के उनके जनेयू को, एक मन जनेयू को इकट्ठा करके तोला था, लूट मची थी जब यहां से बहुत सारे मुगल एम्परर आए थे और हर मंदिर की हर चीजें उठाकर ले गए थे, लूट मची थी तब जब विमेन वर रेप इन द टेम्पल प्रमाइसेस. That's a much bigger problem. If we overcome that, then I think this is a very, very minor thing and a human error. And not error, it's a human greed of few individuals.
13: The old debate of how far can one push creative freedom has resurfaced again. How so? Well, the controversy surrounding Diljit Dosanjh's Tara Satluj has intensified further over the same question. Its Union Minister Ravneet Singh Bittu, who has now issued a direct challenge to the film's makers. Bittu has asked the makers to publicly present evidence, official records and judicial findings to support the film's claim of 25,000 missing or illegally cremated bodies in Punjab. He said, filmmakers cannot invoke creative freedom to merely portray disputed figures as established historical facts. Satluj, a film blocked by the censor board and taken off the OTT, once again has become the biggest political flashpoint in a state that is headed to elections next year, that is Punjab. The movie is based on the life of human rights activist Jaswant Singh Kalra and covers the turbulent period of terrorism and extrajudicial killings in the very state.
16: ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ
17: ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ
16: ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪਾਤੀ, ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਹੂਗੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਟਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਫਿਲਮ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ ਦਲਜੀਤ ਦਸਾਂਝ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੀ ਪਿਕਚਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਓ ਟੀ ਟੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਨਾ, ਓਵਰ ਦਾ ਟੋਪ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਵਰ ਦਾ ਟੋਪ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਟੋਪ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦੇਣ, ਲੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾਈ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਪਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
13: On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here. But do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates and the top stories through the day. Thank you for watching. This is Shreya Kundu.
18: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
19: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
20: Jack, come home. It's supper time.
19: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
21: Hey Jack, could you play that one song with the words?
19: Jack FM, playing what we want.